नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 और ठीक 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। मयोन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्रोध में हजार शब्द बोलने से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

यह है विविध भारती। झरोका में लीजिए सुनिए आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 284, 6:35 से 6:45 से सुबह व शाम, संगीत सरिता। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। आज के फनकार आज केंद्रित होगा फिल्मकार गुलजार पर, समय सुबह 9:30 से। दस बजे पिटारा में सुनिएगा सेहतनामा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल।

एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का। 2:30 से सुनिएगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 से सखी सहेली। चार बजे से पिटारा में सेल्युलॉइड के सितारे में अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। शाम 5 लेकर आएंगे छाया गीत। 5:30 से तराने नए पुराने। छह से संध्या रंजन का वक्त होगा। 7 फौजी साथियों के लिए जयमाला।

7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे हवा महल में झलकी एक पत्र अंग्रेजी में, लेखक चंद्रशेखर पांडे, निर्देशक अनूप सेठी।

रात 9 बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार आज केंद्रित होगा अभिनेत्री मनीषा कोइराला पर। दस बजे से लेकर आएंगे छायागीत और 10:30 से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हनुमान से श्री राम की मुद्रिका पाकर सीता को पवन पुत्र के श्री राम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता।

0: अभी आपने सुनी श्री रामचरितमानस का भाग 284।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: श्री कालीनाथ मिश्रा जी, आज की इस दूसरी कड़ी में मैं रामकृष्ण दास आपका स्वागत करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार दास बाबू।
1: मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय फिल्म संगीत में बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी तबले संगति
2: जी
1: प्रदान की है
2: जी,
1: तो उस सिलसिले में

0: हमें ये बताएं और प्रस्तुत भी करें कि आज आप क्या हमारे संगीत सरिता के श्रोताओं को सुनाने वाले हैं।
1: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया दास बाबू। एक जमाना हुआ करता था कि फिल्मों में प्योर क्लासिकल, क्योंकि सारा क्लासिकल हमारा इतना बड़ा धरोहर है फारूक भाई की, सारा बेस इसी पर है हमारा। और हमारे बड़े बड़े गुरुओं ने बड़ा योगदान दिया है, हमारे चाचा पंडित सामता प्रसाद जी, गुदई महाराज जी जिनको कहते हैं, रविशंकर जी, अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, रईस खान साहब। तो अभी मैं तबले की चर्चा करता हूँ कि मैंने सोचा कि दूसरी कड़ी में क्यों न हम रूपक ताल पे, क्योंकि बहुत से पिक्चर हैं जिसमें गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है। निजामुद्दीन खान साहब का एक अंदाज था और गुदई महाराज जी ने तो झनक झनक, पायल बाजे, शोले, ऐसे बहुत से पिक्चरों में। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि श्रोताओं से सात मात्रा के बारे में बात करें, और यही एक ताल ऐसा है जिसमें खाली नहीं होता है,
0: सम की जगह पे खाली बस।
1: जी हाँ जी हाँ, है ना, क्योंकि

लाजवाब कलाकार हैं दास बाबू। तो नादिन दिन्ना का क्या चलन है, तो प्रस्तुत करता हूं रूपक ताल। तो श्रोताओं, रूपक ताल सात मात्रे का होता है जिसमें एक, चार और छह पे ताली होती है। तीन विभाग होते हैं,

इसे कहते हैं छूट। छूट क्या चीज है? अपनी मन की बातें, वो वही बनता है। कभी हो सकता है वो हम सम पे आने पे, हो सकता है कि हम चूक जाएं, लेकिन छूट का अंदाज है कि एक बोलों के साथ नोक झोंक। कटिन कटिन।

0: क्या खूब बजाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: अच्छा एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये तबला बजाते वक्त बहुत बार आप लोग बायां और दायां हाथ दोनों तबले पे बजाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कब बजाते हैं?
1: ये जब मूड बन जाए।
0: नहीं कोई स्पेसिफिक

0: बोल है
1: नहीं,
0: जिसके लिए
1: बजाते हैं। एक एक एक जब हमको लय दिखाई देता है तो हम चांटी पे खेल सकते हैं, एक अंदाज है उसका कि चलो चांटी पे ले लें, क्योंकि इतना अच्छा लहरा है। लहरा देखिए एक बात बता दें, लोग कहते हैं कि हम लहरा नहीं बजाएंगे तबला वाले के साथ।
0: अच्छा,
1: लहरा बजाना बड़ा मुश्किल है दास बाबू।
0: वो तो है,
1: जो बहुत ताल से मारा हुआ होगा ना,
0: लहका पक्का भी होगा।
1: हाँ वही वही, जो बहुत ताल से भरपूर होगा वही ये बोझा संभाल पाएगा।
0: और एक बात
1: जी,
0: आपने खत्म करते वक्त कई तिहाइयां ली, तो तिहाई के बारे में थोड़ा बताइए ना, तिहाई होती क्या चीज है?
1: हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्या बात है। तिहाई एक वो शब्द है कि हम जब खाना खाने बैठते हैं
0: जी,
1: तो जरूरी नहीं कि हम खाली चावल दाल ही खाएं, कभी अचार खा लिया, कभी थोड़ा सा आम चख लिया, कभी थोड़ा सा पानी पी लिया। तबले का यह एक प्रचलित नाम है तिहाई। वो छोटी छोटी सिंपल से बोल होते हैं जिसके साथ हम नोक झोंक कर सकते हैं, जो पर हमको लय को देखते जाना है, लय हमारा प्रधान है। तो जो तिहाई है, तिहाई हम एक छोटी छोटी चीजों को बजा के हर ताल में, जरूरी की रूपक ताल में बजाएं हम
0: जी।
1: उस तिहाई से बोलों को हम खत्म करते हैं तो आनंद आता है, और जब तिहाई का धा गिरता है तो हमें भी आनंद आता है, सुनने वाले श्रोताओं का भी आनंद आता है। इसका नाम है जैसे
0: क्या बात, यानी एक ही चीज तीन बार आती है।
1: जी हाँ जी हाँ, नहीं तीन बार टुकड़ा भी होता है, तीन बार परण भी होता है,
0: छोटे बड़े
1: हो जाते हैं। जैसे एक झलक दिखा देता हूँ, तीन

0: मिश्रा जी, फिल्म में मेरे ख्याल से बहुत सारे गीत होंगे जो रूपक पर आधारित
1: हैं। बहुत बहुत।
0: तो कोई एक गीत आप बताइए ना हमारे श्रोताओं के लिए।
1: आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, एक बड़ा सुंदर गाना है, रूपक ताल में ही है वो। फिल्म है मेरे हम सफर।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। उज्जैन की पावन धरा पर जहाँ शिप्रा का निर्मल जल प्रवाहित है, श्री महाकालेश्वर का दरबार अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित रहता है। कालों के काल की शरण में आते ही जीवन के सभी संताप मिट जाते हैं और मन में केवल शांति का वास होता है। आइए त्रिलोकीनाथ के इसी कृपालु स्वरूप का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं ये भावपूर्ण वंदना मैथिली ठाकुर की आवाज़ में।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का महाकाल वंदन अब यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजी। बॉलीवुड बीट्स नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9:30 पर। अपनी पसंद के गीतों का आनंद लीजिएगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। सुबह 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। यादों की महफिल आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 पर। और दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 सुनिए महिला श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4:00 पिटारा में आज सुनिए हेलो फरमाइश। युववाणी युवा श्रोताओं की पसंद का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र की सांध्यकालीन सभा के आरंभ में शाम 5:00। शाम 6:00 समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या का। पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:21 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे मालवी बोली का विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। और 8:15 पर फिल्म संगीत आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम कहकशां सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे रात 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रजनी रात 10:30 पर। रात 11:10 से सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड के कार्यक्रम। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में करेंगे शक्ति की सप्तधारा संकल्प अभियान पर चर्चा। भोपाल के रविंद्र भवन में आज होगा समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के क्रियान्वयन में डिंडोरी जिला देश में प्रथम। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के शी युची को हराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में शक्ति की सप्तधारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्य योजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट और क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्य योजना में बदलना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का भी शुभारंभ होगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला और ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों पर 20 अगस्त को कलश वंदन और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पावन कलश को कलश रथ में स्थानीय रविदास मंदिर और ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 अगस्त से 10 सितंबर तक निर्धारित मार्ग पर कलश रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ उद्योग निवेश संवर्धन की सर्वोच्च सेंट्रल बॉडी की बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास तथा कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश दुनिया के सभी निवेशकों का विश्वास जीता है और आज मध्य प्रदेश पूरे देश में निवेशकों के सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।

0: जिस प्रकार से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसे समग्र रूप से देश को समृद्धशाली बनाने के लिए जो सबसे उत्कृष्ट भाव से काम हो रहा है, मैं कई सारे कामों के साथ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला हमारा ये रोजगार परक उद्योग है, जिसके माध्यम से न केवल देश समृद्ध होगा बल्कि राज्य भी कदम से कदम मिलाकर के न केवल समृद्धि के मार्ग पर चलेंगे बल्कि हर वर्ग के कल्याण के लिए इसी में से मार्ग निकलेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जो कि उद्योग जगत के हम पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और केंद्र तथा राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी परीक्षा प्रक्रिया को ऑडिट कराने और सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडोरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह में प्रथम रैंक प्राप्त की है। ये उपलब्धि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रभावी समन्वय से प्राप्त हुई है। इस योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई और कृषि अधोसंरचनाओं को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि डिंडोरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के साथ श्री अन्न मिलेट्स के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है, जिससे 52,282 कृषक परिवार तथा 14 कृषक उत्पादक संगठन सीधे जुड़े हैं। जिले के पारंपरिक कोदो कुटकी उत्पादों को GI टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। भारत सरकार की नागरिक उन्मुख पहल रिफॉर्म उत्सव के अंतर्गत जनमंथन विमर्श समाधान के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त प्रणालीगत सुधार संबंधी सुझावों के प्रभावी संकलन, जिला स्तर पर नागरिक सहभागिता और जन जागरूकता तथा गतिविधियों के समन्वय के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गुमशुदा और संकटग्रस्त नाबालिग बालक बालिकाओं की सुरक्षित घर वापसी के लिए संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुरैना जिले के थाना जौरा पुलिस ने गुम हुई 4 नाबालिग बालिकाओं को 24 घंटे के भीतर GRP सूरत के सहयोग से गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से सकुशल पहुंचाया गया। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर बड़ा उलटफेर किया। PV सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गईं। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा, बालाघाट सहित 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बारिश का दौर बना रहेगा। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टरडम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा आज विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। सतना जिले में कल सावन के तीसरे सोमवार को शहर से लेकर गांव तक शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दिन भर मंदिरों में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। वहीं खंडवा की धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली गई। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जबलपुर की ऐतिहासिक मदन महल की पहाड़ी पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अतिक्रमण के कारण करीब 2 साल से रुका प्रोजेक्ट जरूरी जमीन खाली होने के बाद आगे बढ़ा है। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम कुंडेकसा अडोरी कोरका और बांद्री में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चों में से 133 बच्चे स्वस्थ होकर अपने गाँव लौट गए हैं। शेष बच्चों का उपचार जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

नमस्कार, सुप्रभात। भोर की पहली किरण जब रात के घने अंधेरे को चीरकर धरती पर पड़ती है तो वह सिर्फ उजाला नहीं लाती बल्कि हमें जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा भी सिखाती है। ये सुनहरी सुबह हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गहरी निराशा क्यों न हो, उसे चीरकर आशा का सवेरा एक दिन ज़रूर आता है। हर नई सुबह अपने साथ उम्मीदों का एक नया आसमान और कुछ कर गुजरने का अवसर लेकर आती है। कल की नाकामियों को पीछे छोड़कर आज के इस कोरे पन्ने पर अपने अटूट विश्वास की इबारत लिखने का समय आ गया है। तो चलिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाइए और पूरे उत्साह के साथ आज के इस नए दिन का स्वागत कीजिए। आकाशवाणी उज्जैन के आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि बजाज भराड़िया। आज की सकारात्मक और खूबसूरत सुबह में आप सभी का आत्मीय अभिनंदन है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस सुंदर सुबह का इस खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रभात उज्जैन में हम आपके लिए लेकर आते हैं उज्जैन से जुड़ी हुई कुछ विकासात्मक खबरें। तो श्रोताओं, पहली खबर है त्रिवेणी घाट स्थित नवग्रह शनि मंदिर अब महाकाल लोक की तर्ज पर एक भव्य शनि लोक का रूप लेने जा रहा है। इसके लिए यूडीए ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत लगभग 120.40 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 23,600 वर्ग फीट क्षेत्र में कई आधुनिक निर्माण कार्य किए जाएंगे। नए स्वरूप में लगभग 13,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। परिसर में एक भव्य फ्रंट प्लाजा, आकर्षक क्यू शेड और आधुनिक यज्ञशाला का निर्माण होगा। साथ ही हरियाली के लिए लैंडस्केपिंग और फाउंटेन भी लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस सौंदर्यकरण में मंदिर के मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि आगामी सिंहस्थ से पहले ही हमारा ये मंदिर नए और आकर्षक स्वरूप में हम सबके सामने होगा। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म संत ज्ञानेश्वर से ये गीत, जिसे गाया है मुकेश ने।

श्रोताओं, सुप्रभात। उज्जैन में अब समय है कार्यक्रम के उस भाग का जिसका नाम है समाचार पत्रों से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उज्जैन के समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन के विकास से जुड़ी कुछ खास खबरें। श्रावण मास की महाकाल की तीसरी सवारी भोले शंभु भोलेनाथ के जयकारों के मध्य नगर भ्रमण पर निकली, जिसमें भगवान चंद्रमौलेश्वर पालकी में मनमहेश हाथी पर और भगवान का शिव तांडव स्वरूप गरुड़ रथ पर विराजे। सवारी में लगभग 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल ने सलामी दी, विभिन्न बैंड दलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अब अगली सवारी श्रावण मास के चौथे एवं अंतिम सोमवार 24 अगस्त को निकाली जाएगी। अगली खबर है सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की जयंती पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री दवे को डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन सारस्वत सम्मान से अलंकृत किया गया। संगोष्ठी में डॉक्टर सुमन की काव्य चेतना और उनके जीवन के विविध आयामों पर चर्चा की गई। ये आयोजन हिंदी अध्ययन शाला और प्रेमचंद्र सृजन पीठ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। श्रोताओं, जिले के पात्र परिवारों को अगस्त और सितंबर माह का राशन एक साथ 31 अगस्त तक वितरित किया जाएगा। हितग्राहियों को लगभग 2 महीने का राशन प्राप्त करने के लिए POS मशीन पर 2 बार अंगूठा लगाना होगा। वहीं दूसरी ओर एक और खबर ये आई है कि आपदा प्रबंधन में कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नामांकन 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं। ये नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किया जा सकेगा। अगली खबर है नागपंचमी और महाकाल की तीसरी सवारी के दौरान शहर में आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए नगर निगम द्वारा सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सवारी के बाद लगभग 30 मिनट में पूरे मार्ग को साफ कर दिया गया। स्वच्छता के इस कार्य में लगभग 350 सफाई मित्र तैनात रहे। इसके अतिरिक्त दर्शनार्थियों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए शहर में 8 सहायता नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए थे, जिससे उज्जैन के बाहर से आए श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियत मिली। श्रोताओं, अगली खबर है हमारे पास में जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, वो ये है कि ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण में उज्जैन प्रदेश में अव्वल नंबर पर आया है। उज्जैन जिले ने ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। जुलाई में जिले में 327 शिकायतें दर्ज हुई और सभी का निराकरण किया गया। इनमें सड़क गड्ढे और अन्य स्थानीय समस्याओं से जुड़ी शिकायतें शामिल थीं। प्रशासन ने शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही कर लोगों को राहत दी। ऑनलाइन व्यवस्था से नागरिकों के लिए अपनी समस्याएं दर्ज करना आसान हुआ है। समय पर समाधान मिलने से प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। ये उपलब्धि उज्जैन में बेहतर प्रशासन और जवाबदेही का उदाहरण है। अगली खबर है उज्जैन में 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू की जा रही है। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। ऑनलाइन रिकॉर्ड के से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की पहचान आसानी से होगी। शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को भी उपस्थिति का रिकॉर्ड

व्यवस्थित रूप से मिलेगा। इस व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। तकनीक के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये उज्जैन की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। अगली खबर है, उज्जैन जिले में बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए चलाए जा रहे उत्कर्ष अभियान में अच्छी प्रगति हुई है। 15 अगस्त तक करीब 60% बच्चों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई। अभियान का उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान करना है। जांच के बाद जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक सहायता और उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है। बड़ी संख्या में बच्चों तक स्वास्थ्य जांच पहुंचाना अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शेष बच्चों की स्क्रीनिंग पूरी होने पर इसका लाभ और अधिक बच्चों तक पहुंचेगा। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के लिए ये पहल काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगली खबर जो आई है वो है हमारी, नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। नागपंचमी पर उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और समाचार पत्रों के अनुसार 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,11,000 भक्तों ने दर्शन किए। ये संख्या उज्जैन की आबादी से लगभग 4.5 लाख अधिक है। देश भर से श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। भक्तों की इतनी बड़ी संख्या शहर की धार्मिक लोकप्रियता को दर्शाती है। तो ये थी उज्जैन की कुछ प्रमुख खबरें उज्जैन के समाचार पत्रों से। आज उज्जैन के विकास की बातें और भी होंगी, पर उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में दो आंखें 12 हाथ फिल्म से ये गीत।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। ये कार्यक्रम है सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपकी सखी रश्मि बजाज। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के विकास की खबरों के बारे में। शहर के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आगर रोड पर मकोड़िया आम नाके से गदा पुलिया तक बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज के पहले पिलर का काम 19 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, ऐसी खबर प्राप्त हुई है। चरक अस्पताल के पास बैरिकेडिंग कर लेवलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 60 पिलर बनाए जाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 330 करोड़ रुपये है। आगामी सिंहस्थ को देखते हुए निर्माण एजेंसी तेजी से काम कर रही है। इस ब्रिज के बन जाने से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश कम होगा, जिससे जाम की स्थिति से काफ़ी हद तक हमें निजात मिलेगी। साथ ही जो वाहन चालक शहर के भीतर नहीं आना चाहते, वे आसानी से बाईपास होकर निकल सकेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं फिल्म शोर से ये गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर, मन्ना डे और श्यामा चित्तर ने।

श्रोताओं, आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए अभी से एक व्यापक योजना पर काम शुरू हो गया है। प्रयागराज जैसे जाम से बचने के लिए उज्जैन सहित पड़ोसी 9 जिलों में होल्डिंग एरिया तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने सीहोर, धार, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और नीमच में विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन होल्डिंग एरियाज में श्रद्धालुओं के ठहरने, वाहन पार्किंग, शौचालय, चाय नाश्ते और शेड पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। यदि उज्जैन में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को इन जिलों में सुरक्षित रोका जा सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी श्रद्धालु को जाम में न फंसना पड़े और वे अपनी यात्रा सुविधाजनक रूप से पूर्ण कर सकें। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म आखिर क्यों से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज ने।

श्रोताओं, किसानों के दिन रात की मेहनत और उनकी सुविधा से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश की लगभग 260 से अधिक कृषि उपज मंडियां अब पूरी तरह से ई सिस्टम से जुड़ गई हैं। हमारे उज्जैन की मंडी में ही रोज़ाना सीज़न के दौरान लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की सोयाबीन और गेहूं के सीज़न में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का गेहूं किसान भाई बेचने लाते हैं। पहले हाथ से बनने वाली नीलाम पर्ची में कई बार गड़बड़ी की आशंका रहती थी, लेकिन अब ऑनलाइन पर्ची और ऑनलाइन तौल होने से किसी भी तरह की हेराफेरी की संभावना खत्म हो गई है। भुगतान व्यवस्था भी अब काफ़ी पारदर्शी हो चुकी है। 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान RTGS के माध्यम से लगभग 24 घंटे में सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म अंकुश से ये गीत, जिसे गाया है पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ ने।

कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। सुप्रभात उज्जैन से अपनी दोस्त रश्मि बजाज को अब दीजिए अनुमति। हम जल्द ही पुनः लौटेंगे 8:30 पर और लेकर आएंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है, और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
4: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया, और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने JSSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
3: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, और JPSC JSSC न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद JSSC CGL के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया, और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है, और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक

0: सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री V.D. सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।

0: विझिंजम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंजम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ते ने नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Jharkhand government cancels JSSC CGL examination after 24-day students' protest. Also cancels all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. US President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter US election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Jharkhand today. And Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Chi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
5: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. The government has also decided to investigate recruitment processes conducted by JPSC and JSSC from 2014 onwards and constitute a committee headed by IAS officer Amitabh Kaushal to recommend reforms in the examination system. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari along with MLA Jairam Kumar visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mehto and other protesting students by offering them juice. Devendranath Mehto thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC-JSSC Nyay Manch announcing that it was suspending its agitation for now. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision but said the reform manch would continue its agitation until a CBI probe is ordered into the alleged irregularities. The government's decision has also triggered protests among candidates already appointed through the JSSC CGL examination, with several selected candidates gathering outside Project Bhavan in Ranchi and expressing concerns over their jobs in future. The reform manch is expected to announce its detailed position and future course of action today, particularly on the demand for a CBI probe. Navish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
4: US President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter US election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. We have a report.
3: In a social media post, Mr. Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. Mr. Trump used the remarks to reiterate his demand that the U.S. Congress pass the Safeguard American Voter Eligibility, that is Save America Act. The proposed legislation seeks to introduce stricter requirements for voting in federal elections. It would require voters to provide documentary proof of U.S.
4: citizenship as well as valid government issued photo identification while registering for federal elections. The White House has described the legislation as a measure to ensure that only US citizens participate in American elections. The

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, और होंगे क्यों नहीं, आपके साथ है आपके दिन में सुकून और ताजगी भरने के लिए आकाशवाणी उज्जैन। मालवा के अंचल से प्यार और अपनेपन का एहसास लिए मैं हूं आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज, और मैं लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है उज्जैनी आरजे।
1: मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।
0: श्रोताओं, ये खूबसूरत पंक्तियाँ उस अजीम शख्सियत की गहराई बयां करती हैं जिन्हें पूरी दुनिया गुलजार के नाम से जानती है। दोस्तों, कुछ लोग शब्दों से नहीं एहसासों से लिखते हैं। आज हम उसी एहसास के सफ़र पर चलेंगे। आज बात उस शख्स की जो संपूर्ण सिंह कालरा के रूप में 18 अगस्त 1934 के दिन अविभाजित भारत के दीना गांव में जन्मा था। एक ऐसा बचपन जहां पंजाब की सौंधी मिट्टी थी, लेकिन तकदीर में बंटवारे की लकीरें लिखी थी। 1947 के बंटवारे ने सिर्फ ज़मीन नहीं बांटी, बल्कि ढेरों परिवारों के सपने और बचपन को भी बिखेर दिया। अपने वतन से उखड़कर एक छोटी सी उम्र में ये नौजवान दिल्ली और फिर सपनों के शहर मुंबई जा पहुंचा। एक ऐसा शहर जो रोज़ लाखों के सपने तोड़ता है और बनाता है। यहाँ गुजारा करने के लिए एक मोटर मैकेनिक का काम शुरू हुआ, लेकिन जिसके हाथ और दिल कुदरत के रंग बुनने के लिए बने हों, वो गैराज के मोटर पैंट्स में अपना कौन सा मुस्तकबिल देखता। वो गैराज सिर्फ पेट पालने का जरिया था, क्योंकि संपूर्ण सिंह की असली मंजिल तो शब्दों की वो दुनिया थी जहां वो गुलजार बनने वाले थे।

दोस्तों, मुंबई के बेलासिस रोड का वो मोटर गैराज, गाड़ियों के एक्सीडेंटल हिस्से, तेल की महक और ऑटो पेंट्स को मिलाने का काम संपूर्ण सिंह इन पेंट्स को बहुत बारीकी से मिलाते थे। ठीक वैसे ही जैसे आगे चलकर उन्होंने लफ्ज़ों को धुनों से मिलाया, इस नीरस काम के बीच भी उन्होंने खुद को किताबों से जोड़े रखा। काम से जो भी वक्त मिलता वो या तो पढ़ते या फिर लिखते रहते। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग्स में जाना, कृष्णचंद्र, सरदार जाफरी, फैज़ अहमद फैज़ जैसे अदीबों को नज़दीक से देखना उनके लिए किसी इबादत से कम नहीं था। वो कहते हैं ना, अगर आप में आग हो तो अंधेरे से अंधेरे कोने में भी रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है।

0: श्रोताओं, जिंदगी हमेशा एक सही वक्त पर किसी फरिश्ते को भेजती है। गुलजार साहब की जिंदगी में वो फरिश्ते बनकर आए मशहूर गीतकार शैलेंद्र और महान फिल्मकार बिमल रॉय। गुलजार का फिल्मों में लिखने का कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ साहित्य के लिए जीना चाहते थे, लेकिन शैलेंद्र उन्हें बिमल रॉय के पास ले गए। बिमल दा अपनी फिल्म बंदिनी बना रहे थे और फिर जो हुआ, आइए सुनते हैं खुद गुलजार साहब के से ही कि वो कैसे फिल्मों में आए।
1: मोटर गैरेज में एक मैं काम करता था। उस जमाने में मेरे बहुत से दोस्त थे, क्योंकि मैं IPTA और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन PWA में इन जगहों पे जाया करता था, तो दूसरे राइटर्स भी मिलते थे वहाँ
2: जी।
1: तो उनमें शैलेंद्र भी थे और शैलेंद्र फिल्मों में भी काम कर रहे थे। बॉम्बे यूथ कॉर जाया करता था, तो वहाँ सलीलदा से दोस्ती हो गई थी बिमला के पास
2: जी।
1: फैमिली के लिए ये था कि भाई एक मिरासी घर में पैदा हो गया है जिसे खानदानी पेशे से, बिजनेस से, जो रोजगार है उससे, कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कुछ और ही बनना चाहते हैं। तो और उसमें उनकी गलती नहीं, हमारे समाज का जो सेटअप था वो यही था कि शायर कमा नहीं पाते थे अपनी शायरी से, और फाइन आर्ट्स की सभी की ये हालत थी, तो इसलिए वो इस तरह से सोचा करते थे, लेकिन मैं बुज़िद था। उसमें बस एक सिचुएशन पर सचिन देव बर्मन, सचिन दा हम कहते थे उन्हें, उनसे थोड़ी सी कोई खफगी हो गई शैलेंद्र की, तो मुझे बिमल दा के पास जाने के लिए, बिमल रॉय उनको बिमल दा कहते थे, उनकी फिल्म बंदनी शुरू होने वाली थी, तो मुझे जाने के लिए कहा। और मैं फिल्मों में नहीं जाना चाहता था, एक तो फिल्मों में नहीं जाना चाहता है, वर्स्ट ऑफ ऑल के गाने नहीं लिखने। अब ये कहीं बैठा हुआ था दिमाग में, आई लिटरेचर वॉज माई फील्ड, लिटरेचर में आई कम्फर्टेबल एंड आई वॉन्ट टू लिखना चाहता था अदब साहित्य से, इसीलिए PWA और इसीलिए इप्टा एंड इसीलिए। तो उसमें शैलेंद्र ने मुझे एक बार डांट के भेज दिया, तो सीनियर थे मुझसे, पर वही दोस्ताना कि नाराजगी हो गई, तू हो गई होगी, तुम जाओ, तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हें देवू कह रहा है। देवू ने शिकायत की कि ये जाता नहीं, ये जाना नहीं चाहता, तो शैलेंद्र ने भेज दिया। तो बिमल्ला से मिले, तो बिमल्ला ने सिचुएशन बताई और गाने के लिए कहा।

मैं नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ काबली वाला के नाम से, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन यू विल नॉट गो बैक टू दैट मोटर गैराज एंड डोंट वेस्ट योर सेल्फ। और ये मैंने किसी से अपने खानदान में किसी से नहीं सुना था, एंड आई क्राइड आउट, आई जस्ट बस्टेड आउट। मैं आज भी गला रुंध जाता है मेरा बात करता हूँ, एंड द वे ही सेड इट, इट वाज लाइक अ फादर, एंड दैट्स माय रिलेशन विद बिमला। He is not only a guru to teach me, he was my guardian, he was like a father to me.

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, स्वागत है आपका पुनः उस कार्यक्रम में जिसका नाम है उज्जैनी आरजे। मैं हूं आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज, और ये है आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण FM 102.5 MHz पर। और हम बात कर रहे हैं गीतकार, शायर और निर्देशक गुलजार की। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता था गुलजार और राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा का। दोनों की दोस्ती बिमलदा के मोहन स्टूडियो में हुई थी, जब पंचम अपने पिता सचिन देव बर्मन को असिस्ट किया करते थे। गुलजार साहब अक्सर बताते हैं कि पंचम के साथ काम करना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी। चलते फिरते, गाड़ी में सफ़र करते हुए, यहाँ तक कि गाड़ी के डैशबोर्ड या दरवाजे पर ही पंचम दा ताल देते और उसी वक्त कोई धुन बन जाती, और फिर गुलजार साहब उस धुन पर ऐसे अल्फाज पिरोते जो सीधा दिलों में उतर जाते।

0: दोस्तों, गुलजार की नज़मों में जो दर्द झलकता है वो कोई बनावटी उदासी नहीं है, वो उनके अपने तजुर्बे की आग से निकला है। बंटवारे के वक्त उन्होंने कटी हुई लाशें देखी थी, खून से सनी हुई सड़कें देखी थी। वो दर्द, वो खौफ इतने गहरे थे कि कई सालों तक आधी रात को वो बुरे सपने देखकर घबराकर उठ बैठते थे। वो खौफनाक मंजर उनका पीछा नहीं छोड़ता था, उस घुटन को बाहर निकालना ज़रूरी था। फिर वो सारा दर्द उनकी कहानियों, उनकी नज़मों में बहने लगा। जब भी कहीं कोई दंगा होता, गुलजार साहब का दिल भीतर तक रोता। उनका लिखा नाटक खराशें उसी दर्द और बंटवारे की टीस को बयां करता है। वो कहते हैं, जब मैं लिखता हूँ कि एक अकेला इस शहर में, तो वो सिर्फ मेरी तन्हाई नहीं बल्कि समाज के उस अकेलेपन और बेबसी की बात होती है जो दर्द से गुजर रहे एक आम इंसान के दिल में पल रही होती है।
1: सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तन्नूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: श्रोताओं, स्वागत है आपका पुनः उस कार्यक्रम में जिसका नाम है उज्जैनी आरजे और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। मैं हूं आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज और हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की। दोस्तों, सिर्फ कागज़ और कलम तक गुलजार साहब का सफ़र सिमटा नहीं रहा, उन्होंने कैमरे की आँख से भी ज़िंदगी को दुनिया के सामने रखा। साल 1971 में उन्होंने अपनी फिल्म डायरेक्ट की, पहली फिल्म मेरे अपने। ये फिल्म महज एक कहानी नहीं थी, ये 70 के दशक की बेरोजगारी और युवाओं के भटकाव का दस्तावेज थी। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, ये सिर्फ एक गीत नहीं एक पूरी पीढ़ी का दर्द था। इसके बाद उन्होंने कोशिश, आंधी, परिचय और मौसम जैसी बेमिसाल फिल्में दी। गुलजार ने हमेशा उस सिनेमा को चुना जो आम इंसानों के जज्बातों, उनके रिश्तों और उनकी छोटी छोटी जद्दोजहद से जुड़ा हो। उनके लिए सिनेमा कोई बाजार नहीं था बल्कि समाज को समझने और समझाने का एक बेहद संवेदनशील जरिया था।

0: दोस्तों, अगर गुलजार साहब की ज़िंदगी का जिक्र हो और मिर्ज़ा गालिब का नाम न आए, ऐसा मुमकिन नहीं। बचपन में अपने एक मौलवी साहब से गालिब को तरन्नुम में सुना था उन्होंने, और बस वो अल्फाज उनके जहन में हमेशा के लिए बस गए। उनके लिए गालिब कोई किताबी शायर नहीं थे, बल्कि उस घर के बुज़ुर्ग की तरह थे जिनकी गोदी में चढ़कर आप उनके बारे में जान सकते हैं। गुलजार की बरसों की मेहनत का ही नतीजा था कि टेलीविज़न के पर्दे पर हमें नसीरुद्दीन शाह और जगजीत सिंह के साथ मिर्ज़ा गालिब देखने को मिला। ये सीरियल उन्होंने कैसे बनाया और किस तरह वो उनके दिल के करीब था, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी।
1: रिश्ता वहाँ से बढ़ा और ये ख्वाहिश थी कि मैं गालिब पर एक फिल्म बनाऊँ। उस दौर में पहुँच गया जहाँ पे गालिब पर फिल्म बनाने को कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से मिस्टर ए एस तातारी आपके डायरेक्टर जनरल थे दूरदर्शन पे, उन्होंने कहीं फाइल में मेरा एक खत या एक एप्लीकेशन देख ली जब वो, और वो ज़बानदान हैं, वो अदब जानते हैं, तो उनका वो खत आया, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट सीरियल।
2: उनके देखे से
1: एंड आई थिंक इट इज मिस्टर तातारी हु स्विच्ड इट ऑन एंड आई केम डाउन, आई रोट एंड सबमिटेड। फिर वो कहने लगे, उन्होंने भी कहा कि और बनाइए 17, आई सेड एनीवेयर बिटवीन 13 and 26, तो परमिटेड, तो कमिट करना पड़ता था, तो मैं आई सेड एनीवेयर दिस इज हाउ इट इज एंड आई एम सबमिटिंग द स्क्रिप्ट, और मैं उसे स्टफ करके खींच के वो नहीं करना चाहता, तो 17 पे वो खत्म हो गया। आई थैंक दूरदर्शन फॉर दैट, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट आई कुड मेक दिस। और बजाय 3 घंटे की फिल्म के, मैं उसे 6.5 घंटे का एक सीरियल बना पाया।

दोस्तों, गुलजार साहब की शख्सियत के ढेरों रंग हैं, लेकिन उनका सबसे प्यारा रंग है बच्चों से उनका लगाव। बड़े बड़े फ़लसफ़ों को किनारे रख कर जब वो बच्चों के लिए लिखते हैं तो वो खुद एक बच्चे बन जाते हैं। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, इस एक गीत ने भारत के हर बच्चे को टीवी के सामने बांध दिया था। गुलजार साहब को हमेशा ये फिक्र रही कि हमारे पास बच्चों के लिए बाल साहित्य बहुत कम है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वो आरुषि नाम की संस्था के ज़रिए शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों से भी जुड़े रहे, और जब उनकी खुद की बेटी मेघना का जन्म हुआ तो उनके भीतर का पिता और ज़्यादा कोमल हो गया। वो कहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी जिंदगी को खिलते हुए देखना सबसे खूबसूरत एहसास रहा, जैसे किसी आँखों की महकती खुशबू की तरह।

दोस्तों, गुलजार की शायरी में प्रकृति एक अहम किरदार निभाती है, खासकर चांद। उनके लिए चांद सिर्फ आसमान का कोई ग्रह नहीं है, वो उनका दोस्त है, उनका राजदार है। नंगे पांव चांद आएगा, खिड़की पर सीटी बजाएगा। चांद को इतना मानवीय, इतना करीबी शायद ही किसी और शायर ने बनाया हो। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में सुंदरता दिखती है, बंद किताबों में सूखे हुए फूल, बारिश की बूंदें और सूनी गलियां। उनके अल्फाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इर्द गिर्द बुने होते हैं। वो शब्दों के साथ खेलते हैं, नए मुहावरे गढ़ते हैं। जब वो लिखते हैं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो रिश्तों के पीछे छूटे हुए छोटे छोटे एहसासों को समेट लेते हैं। गुलजार की ये सादगी ही है जो उन्हें सुनने वाले हर इंसान को लगता है कि ये कहानी तो मेरी ही है।

दोस्तों, जब कोई कलाकार अपनी पूरी शिद्दत और सच्चाई को पन्नों पर उकेर देता है तो वक्त खुद उसके माथे पर सम्मान का ताज सजाता है। एक गैराज से शुरू हुआ ये सफ़र जब आगे बढ़ा तो दुनिया के सबसे बड़े मंचों ने गुलजार साहब के आगे सिर झुकाया। गीत जय हो के लिए जब उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर, अकादमी पुरस्कार और ग्रेमी अवार्ड से नवाजा गया तो पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो या फिर साहित्य का ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, हर बड़े सम्मान ने उनके दर पर दस्तक दी है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। इसके अलावा 8 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 22 फिल्मफेयर अवार्ड उनकी बेमिसाल कला की गवाही देते हैं। पर दोस्तों, इन तमाम चमचमाते पदकों और ट्रॉफियों से कहीं ऊपर है वो मोहब्बत जो आप और हम उनके लिखे अल्फाज में महसूस करते हैं। उनका असली सम्मान तो वो नमी है जो उनके गीत सुनकर हमारी आँखों में ठहर जाती है।

दोस्तों, गुलजार होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ज़िंदगी के हर कड़वे और मीठे तजुर्बे को खुले दिल से गले लगाने का नाम है। वो कहते हैं कि इंसान की उम्र छोटी हो सकती है, सूरज की आग बुझ सकती है, लेकिन एक कविता, एक नज़्म हमेशा ज़िंदा रहती है। उनके गीतों ने, उनकी फ़िल्मों ने हमारी ज़िंदगी को एक नया नज़रिया दिया है। वो आज भी लिखते हैं, वो आज भी जवान हैं, और उनकी कलम से निकला हर लफ्ज़ एक ख्वाब की तरह आज भी अनगिनत दिलों को गुलजार कर रहा है। गुलजार ने अपनी लेखनी को वक्त के साथ बहने दिया और आज के समय में भी इतने लोकप्रिय गीत उन्होंने लिखे जिनके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले हैं। फिर वो माचिस का चप्पा चप्पा चरखे चले ही क्यों ना हो, दिल से फिल्म का छैया छैया हो, साथिया का टाइटल ट्रैक हो, या बंटी और बबली का कजरारे कजरारे तेरे नैना हो, या फिर हो उनका ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो। आकाशवाणी उज्जैन की ओर से उनके जन्मदिन पर हम उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

तो दोस्तों, आज की उज्जैनी आरजे में बस इतना ही। जीवन की कठिनाइयों से घबराएं नहीं, खुद पर विश्वास रखें और हर कठिनाई का सामना करें, जीत आपकी होगी। विद दीज पॉजिटिव वाइब्स, योर आरजे रश्मि बजाज इज साइनिंग आउट नाउ फ्रॉम उज्जैनी आरजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजी FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये

नमस्कार। धड़कनों के तार से सुरों को जोड़ने वाले आपके अपने शो बॉलीवुड बीट्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रश्मि बजाज। हर इंसान के दिल में जज्बातों का एक समंदर होता है और संगीत वो कश्ती है जो हमें उस समंदर की खूबसूरत सैर कराती है। आज हमारे पिटारे में कुछ ऐसे नायाब गीत हैं जो आपके मन के हर कोने को रोशन करेंगे और पुरानी यादों को भी ताज़ा करेंगे। तो चलिए बिना किसी इंतजार के प्ले का बटन दबाते हैं और शुरू करते हैं धुनों का ये सुहाना सफर। दोस्तों, जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उसके बिना एक पल भी गुजारना सदियों जैसा लगने लगता है। तनिष्क बागची की वो सुकून भरी धुन और रश्मि विराग के लिखे वो जज्बाती लव्स जो सीधे रूह में उतर जाएं। उस्ताद राहत फतेह अली खान की उस जादुई और दमदार आवाज के साथ असीस कौर की मिठास का बेमिसाल संगम। फिल्म सिम्बा से सुनिए प्यार और जुदाई की तड़प को बयां करता ये बेहद खूबसूरत नगमा।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण और ये कार्यक्रम है बॉलीवुड बीट्स। दोस्तों, जिंदगी में जब सारे अपने एक साथ हों तो हर लम्हा किसी बड़े जश्न से कम नहीं होता। शंकर एहसान लॉय का वो अल्टीमेट ग्रूवी म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिखे वो मस्ती भरे बोल जिन पर बिना थिरके रहा ही ना जाए। शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह और फरहान अख्तर की वो फुल ऑन एनर्जी वाली आवाज़ें जो किसी भी माहौल में जान डाल दें। फिल्म दिल धड़कने दो से आ गया है वो परफेक्ट फैमिली पार्टी सॉन्ग, तो वॉल्यूम बढ़ाइए और इन्जॉय कीजिए।

दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में अगर कोई ऐसा हम सफ़र मिल जाए जिसके होने भर से सारी परेशानियां छोटी लगने लगे, वही आपका घर बन जाए, तो वो एहसास ही दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। हनी बनी का वो एकदम ताज़ा और सुकून देने वाला संगीत, सागर के लिखे वो सीधे पर दिल पर लगने वाले बोल, नीति मोहन का की मीठी आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से सुनिए प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को आवाज़ देता ये गीत।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क

0: पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
1: चौराहे पर हमेशा जेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
0: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
2: ए भाई जरा देख।

दोस्तों, इश्क में जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो फिर किसी भी और काम में मन नहीं लगता। हिमेश रेशमिया का वो क्लासिक 90 के दशक के फ्लेवर वाला जादुई संगीत, शब्बीर अहमद के लिखे वो सादे लेकिन जज्बाती बोल, कमाल खान की उस अनोखी कशिश भरी आवाज़ और पलक मुच्छाल की मखमली गायकी में फिल्म किसी का भाई किसी की जान से सुनिए मोहब्बत की इसी बेताबी को आवाज़ देता ये ट्रैक।

श्रोताओं, जब किसी की चाहत में इंसान खुद को पूरी तरह से भुला दे और बस उसी के रंग में रंग जाए तो दिल एक जोगिया बन जाता है। अनिक का संगीत धीरज कुमार के बोल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक ऐसा जादू है जो आपको ख्यालों की दुनिया में ले जाएगा। फिल्म प्यार है तो है से पेश है ये प्यार का बेहद प्यारा गीत।

दोस्तों, मोहब्बत के रंग जब वादियों और फिजाओं में घुलने लगे तो हर नज़ारा और भी हसीन हो जाता है। शंकर एहसान लॉय की वो हवाओं में रोमांस घुलने वाली सदाबहार कंपोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे वो दिलकश अल्फाज, सोनू निगम की उस जादुई आवाज़ और अलका याग्निक की बेमिसाल मिठास की वो जुगलबंदी जिसने एक पूरे दौर पर राज किया। फिल्म कभी अलविदा ना कहना से सुनिए प्यार की मीठी सी गुफ्तगू करता ये गीत।

तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी म्यूजिकल महफिल में बस इतना ही। अब आपकी दोस्त रश्मि बजाज को दीजिए कार्यक्रम बॉलीवुड बीट से इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अब समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। बस कुछ ही देर में जिंदगी की बीट्स को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं और अब समय है आपकी फरमाइश का।

नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर अपने लिए कुछ पल चुराना हम भूल जाते हैं, लेकिन जब अपनों की याद आती है तो उनके लिए कुछ खास करने का दिल करता है। आकाशवाणी उज्जैन के सफर में मैं हूं आपकी हमसफर रश्मि बजाज, और स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद के गीतों से सजे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी फरमाइश। अल्फाजों में कहाँ बयां होते हैं जज्बात, अल्फाजों में कहाँ बयां होते हैं जज्बात, ये तो वो खत हैं जो दिलों की बात करते हैं। स्टूडियो में आपके भेजे हुए ढेरों खत मौजूद हैं। हर लिफाफे में सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि किसी की यादें, किसी का प्यार और किसी का इंतज़ार बंद है। आपके इन्हीं खूबसूरत एहसासों को सुरों में पिरोने का वक्त

गया है। आपके अपने खतों में जिन सुरीले नगमों को आपने भेजा है और जिन धुनों की आपने गुजारिश की है आज फिजाओं में, वो धुनें घुलने को बेताब हैं। तो पहला गीत जो हमने लिया है फिल्म लोफर से है, गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा, पूजा, बबीता, नंदिनी, शोभा, आराध्या, खुशी और भूमिका रघुवंशी ने, कुमारी वंदना, लता, लक्ष्मी और नारायण भाव खटसे ने, MLP रोड ग्वालियर से सुरेश, किरण, लव्या, आरव और SK पप्पी ने, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और जग्गी दुआ ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सुफियान अनस, अएजा अल्फिया, सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हदिया और अफिया खान ने।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े और आरती जोंधड़े ने, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय अनिष्का और राधिका गजभिये ने, अकोट महाराष्ट्र से नितिन नलिनी सविता और बाड़ू पाटिल ने, अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन चांदनी राहुल और गोपी वर्मा ने।

श्रोताओं, अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा, रेखा, अनिकेत, अर्पिता और ऋषिका वर्मा ने। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील, कमल और सुच्चा सिंह पाठक ने। दीपिका और गव्या मल्होत्रा ने। विनोदपुरी और जयपाल यादव ने। आर्यनगर भिलाई से उत्तम सिंह, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल ने।

दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में। इस गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था जयदेव ने। अगला गीत है फिल्म साजन से, जिसे गाया है पंकज उधास ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। गीत संगीत है नदीम श्रवण का। आइए आपको बताते हैं, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है लकड़ बाज़ार खंडवा से मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद साकिब और मोहम्मद हसनैन पंवार ने। बाज़ार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने। ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बास ने। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राजश्रीमाली ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम, निखिल कांगड़ा, बबीता और तन्वी बोट ने। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका, भानुप्रकाश खोरवाल ने।

0: दोस्तों, अगला गीत है फिल्म दीवार से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं और संगीत आरडी बर्मन का है। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश ने। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार, रेखा, राखी, तपस्या और करिश्मा कामले ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाव, ललिता, आशा रानी, संजना, परी, गणेश, कार्तिक खटसे ने। कुमारी लड्डू, देविका और स्वाति प्रयागराज चौधरी ने।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बाजीगर से, जिसे गाया है आशा भोंसले और विनोद राठौड़ ने। गीत के बोल लिखे हैं जफर गोरखपुरी ने और संगीत अनु मलिक का है। इस गीत को सुनना चाहा है बेरड़ी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजेश सोनी और कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी और चंचल ढोमने ने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरी ने, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने, बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पराग और प्रदीप पगारिया ने, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल ने, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके ने, सेंथल जिला बरेली से फरियाद ताहिर, तासिफ, मोहम्मद अजहान और अलमीर बशर अंसारी ने।

श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। अगला गीत है फिल्म आराधना से, गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। एसडी बर्मन ने संगीत दिया है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनना चाहा है बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और टुकटुक गवाणकर ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता, प्रिंस, एकांश गवाणकर ने। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर ने। नेवासा कुपटरी से बंडू लाहौर, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास पोपलघट ने। श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव, श्रावण बिड़वे और अनीता बिड़वे ने। नागचून रोड जिला खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियदिल हक और मोहम्मद उमर डावर ने। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश भारती, जाह्नवी वैष्णवी और हर्ष रंभा डे ने। सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष ने।

नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रीचा, स्वीटी, सागर, रिया, रो, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार ने, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर जैतेग और मीका बिरक ने।

श्रोताओं, अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, रणजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह और राहुल ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दत्त, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, आरोही, इशिका और अंजलि और श्वेता वर्मा ने। वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गोड़ ने। पुणे महाराष्ट्र से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका टी और चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अबिका और विशाखा सुनवने ने।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म विरासत से, जिसे गाया है कुमार सानू और जसपिंदर नरूला ने। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम हिंगड़ी, तहसील आलोड, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, रायमा रंजू बाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ने। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठरी और रमेश मिगलानी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर और गुरचरण ने। ग्राम लाहौरी, जिला खंडवा से राजेश कुमार, धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीलू वैद ने। छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार, माया, सनी और कोमल यादव ने। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिहा, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब समय है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत को गाया है कुमार सानू, लता मंगेशकर ने, और इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजिए धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, दीपक मयंक, दीक्षा और कुश मुणत ने। नेहा जैन, चेतन नहाटा और दिलीप सिंह पंवार ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहे कोलसरी बरका काना से अफ्ताज, ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक ने।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर लौटेंगे आपकी नई फरमाइशों के साथ। अपना प्यार अपने खतों के जरिए हम तक यूं ही भेजते रहिए। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी उज्जैन द्वारा केंद्र निदेशक विद्यापति नगर नानाखेड़ा उज्जैन। हमारा पिन कोड है 456010। अब अपनी रेडियो मित्र रश्मि बजाज को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। चलिए आपको ले चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र, जहां से हम आपको सुनवाएंगे हमारे अगले कार्यक्रम।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार को जन्मदिन की बधाइयां।

बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों किसी गलियां सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के फसीदे गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे एक बकरी के ममियाने की आवाज़।

0: और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है।
1: आप सुन रहे हैं रंग तरंग गुलजार स्पेशल।

0: भूपिंदर की आवाज थी, गुलजार के बोल थे, खुद भूपिंदर की मौसिकी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पे लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम, तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया।

दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी, बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर।

0: आमद की आहट और न जाने की टोह मिलती है।
1: कब आते हो, कब जाते हो? इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो। धीरे धीरे आंगन में फिर धूप से सकती रहती है। कब आते हो, कब जाते हो?

कब तक इंतजार करती है? कोहरे में खड़ा हुआ पुल तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम बुझ रही थी और आने वाले की कोई आग नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के शरीर से बहुत खेल चुके, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: उस रात बहुत सन्नाटा था, उस रात बहुत खामोशी थी। साया था कोई न सरगोशी, आहट थी न जुम्बिश थी कोई। हां देर तलक उस रात, मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर एक दूजे को टिकटिकी बांधे तकते रहे।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है जान फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

सितारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों शब का। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है, घाट छोड़ के मांझी तमाम जा भी चुके। चलो ना चांद की कश्ती में झील पार करें।

तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको की तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।

0: विविध भारती पर रंग तरंग गुलजार स्पेशल।
1: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंभे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं, आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?
0: विशाल भारद्वाज की आवाज़।

आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा, आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी, आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने।

गुलाबी हाथों के ठंडे पाए। कहां है तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है? ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।

रंग तरंग कार्यक्रम आज गुलजार स्पेशल है। आज है गुलजार साहब का जन्मदिन और अब देखिए ना वक्त कैसे खत्म हो गया और आखिरी पेशकश की बारी आ गई। जेके बनर्जी की आवाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।

0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।

बसेरा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज आर डी बर्मन की तर्ज। आशा भोसले, आर डी बर्मन, गुलजार, इजाजत।

0: अशोक उसली की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज है। फिल्म का नाम है नमकीन।
1: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीर।

खींच दो तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

फिल्म का नाम था हू तू तू। गुलजार भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर फिल्म रूदाली,

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और आज की इबारत भी पोस्ट हुई और आप सभी जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। उस शख्स को सलाम जो रात में घोलता है चांद की मिस्री, जिसका चांद पर कॉपीराइट है। उस शख्स को सलाम जिसे फूलों की बेलें अरबी में लिखी आयतें नजर आती हैं। उस शख्स को सलाम जिसने उम्र की लंबी सड़कों पर 92 बरस पार कर लिए हैं, जिसे बचपन के अच्छे सच्चे बाबूजी अभी भी याद आते हैं, जिसे वो गलियां याद आती हैं जिन्हें वो छोड़ आया। उस शख्स को सलाम जिसने हर एक गम को गले से लगाया है, जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया है, फिर भी जिसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और जो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। उस शख्स को सलाम जिसे बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं, जिसके लिए पंछी सुरीला सलाम भेजते हैं। सलाम उस शख्स को जिसने हमारे लिए 7 रंग के सपने चुने हैं, जो हाथ पकड़ता है हमारा तो पांव जमी पर नहीं होते। उस शख्स को सलाम जो हर काम दिल से करता है, सपने में मिलता है और रात का सुरमा ले आता है। सलाम उस शख्स को जो जानता है कि कागजों की कश्तियों का कहीं कोई किनारा नहीं होता, जो जानता है कि

तरह की रात में जलना क्या होता है। देखी ना, छोटी सी कहानी से सारी वादी भर गई, जिंदगी गुलजार है। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार साहब को सलाम, और गुलजार साहब से जुड़ी कुछ पहेलियां आज के इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। आप कितना जानते हैं गुलजार साहब को और गुलजार साहब से कितना प्यार करते हैं, आज इसकी आजमाइश भी होगी इन पहेलियों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और जैसा कि आज की इबारत कहती है कि रात में घोलें चांद की मिसरी, दिन के गम नमकीन लगते हैं, तो उसी गाने से करते हैं आगाज। महिला स्वर किसका है इस गाने में, ये बताइए।

सुरीली बोलियां बोलने का संदेशा देते हैं गुलजार और विविध भारती। हमेशा सुरीली बोलियां ही बोलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गुलजार साहब का जन्म कहां हुआ था? और दूसरा सवाल यह है कि साहित्य से जुड़े दो बहुत बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए। तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सुलक्षणा पंडित की खनकती आवाज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने कहा। कुछ श्रोताओं ने इसे लता मंगेशकर की आवाज समझ लिया, ये गलत जवाब था। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं, बचपन के बाबूजी के साथ जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलजार हर फन में माहिर हैं। वो अस्पताल के मायूस माहौल में लिखते हैं, इस अस्पताल में सब कुछ है और माहिर डॉक्टर भी सांसें मशीनें के जरिए चलती हैं और बोतलों में भरकर खून मिलता है, लीवर भी ठीक दाम पर मुहैया रहता है। उन्होंने एक गुलजार साहब की कोई रचना शेयर की है हमारे एक श्रोता ने। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता हैं जिन्होंने आज की इबारत के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, बारिश कम कम लगती हैं, नदियां मध्यम लगती हैं वगैरह चुनकर लिखती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, गुलजार साहब की कलम ने हमें सिखाया है कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है।

खामोशी भी बोलती है शब्दों का ऐसा जादू कम लोगों को आता है। एक और श्रोता हैं जिन्हें आज का सुबह जो आज के फनकार कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया। एक और श्रोता हैं जिन्हें गुलजार और विशाल भारद्वाज का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता हैं जो जर्मनी से हमारे तमाम विविध भारतीय परिवार को सलाम कर रही हैं और आज का ये कार्यक्रम सुन रही हैं। इसके अलावा तमाम श्रोता हैं जो बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, गुलजार साहब कहाँ पैदा हुए थे? साहित्य से बड़े दो साहित्य के दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? आज के इस कार्यक्रम में कुछ बहुत कठिन पहेलियां भी पूछी जाने वाली हैं। चलिए अब ये गाना जो बहुत ही शानदार गाना है ये आप तक आ रहा है और आपको ये भी बताना है कि अगर तीन गुलजार सॉन्ग्स, टॉप थ्री गुलजार सॉन्ग्स, योर मोस्ट फेवरेट्स मैं लिखने को कहूं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपने तीन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने कौन से लिखेंगे आप? विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब।

1978 में आई फिल्म घर का ये गाना। एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि वो नीदरलैंड्स में ये कार्यक्रम सुन रही हैं। और देखिए ना कि न्यूज़ ऑन एयर एक ऐसा एप्लीकेशन है और एलेक्सा डिवाइस जिसके जरिए पूरी दुनिया में विविध भारतीय हमारे श्रोता सुनते चले जा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में लोगों को विविध भारती सुनाई दे रहा है। गुलजार साहब का जन्म दीना में हुआ था और साहित्य के जो दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं वो है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी उन्हें अपनी किताब धुआं के लिए मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था साल 2023-24 में। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है, उनकी नज्मों में पीला चांद कैसे शाख में अटक जाता है, आकाश जमी हो जाता है, गीला चांद कैसे खिल जाता है। गुलजार साहब कहते हैं चांद पर उनका कॉपीराइट है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार ने रोजमर्रा के बिंब जैसे चाय की प्याली, धूप, खिड़की, कोहरा, अलमारी जैसी आम चीजों को कविता का हिस्सा बना दिया है। यही होता है एक बड़ा लेखक। झेलम जिले के दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इसके अलावा

सुलक्षणा पंडित वाली बात भी बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि गुलजार साहब का काम कितना ज्यादा सराहा जाता है। गुलजार साहब को कुल कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं ये बताइएगा। कठिन सवाल है, लेकिन खोज कर बताएं, सोच कर बताएं, पर बताएं जरूर। और दूसरी चीज, जब गुलजार साहब कहते हैं बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, तो क्या याद

0: बचपन।
1: आशीर्वाद फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं की, सभी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखती हैं, एक था बचपन, बहुत अच्छा लगता था, पर अब बाबूजी नहीं हैं तो ये गाना भाव विफल कर देता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मुझे मेरे पिताजी सुनाते थे बचपन में ये गीत, एक था बचपन। उनके पिता, मेरे दादाजी, उन्हें छोड़कर चले गए थे, बाद में पता चला कि वो साधु बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हृदय को झंझोड़ कर रख देता है ये गाना। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बाबूजी के रूप में अशोक कुमार नजर आते हैं। इसके अलावा कई श्रोता हैं। एक और श्रोता लिख रही हैं, गुलजार की आंखों में उदास उदास चमक उनकी आंखों पर अक्स डालती रहती है, यही उदास चमक उनकी शायरी का लहजा भी है। कई श्रोताओं ने जवाब दिया है कि गुलजार साहब को कुल 22 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। 22 फिल्म फेयर पुरस्कार, जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा कीर्तिमान। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पिताजी याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि सुरीला सफर कार्यक्रम में आपने जो गुलजार साहब के गाने सुनवाए वो बहुत अच्छे लगे। कमेंट्स की इतनी लंबी लकीर आज है कि सभी कमेंट्स सुनना, सभी कमेंट्स पढ़ना भी मेरे लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप में से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल

फील किए जा सकें, एटलीस्ट मैं आपके कमेंट्स पढ़ तो सकूं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 116 चांद की रातें एक तुम्हारे कंधे का तिल जैसी गहराई है, गुलजार साहब के अल्फाज में। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि आज कुछ कहने का मन नहीं, वो बस आंखें बंद करके सुरीले गाने सुनती रहना चाहती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता, उनका कहना है कि सावन की बरसती बूंदों ने आज मुझे कान में आकर कहा कि आज का ये कार्यक्रम यूनुस खान पेश करने वाले हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि गुलजार साहब कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने आगाज किया, आंखें नम हो गईं। और इसके अलावा गुलजार साहब को जो अवार्ड्स मिले हैं उन सब की लिस्ट हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यहां पर पेश की है। तो ये सवाल वापस के गुलजार साहब के टॉप 3 सॉन्ग्स आपकी नजर में कौन से हैं, आपके सबसे पसंदीदा दिल के करीब 3 गुलजार गाने हमें बताइए। और अब आ रहा है वो गाना जो हम सब के लिए बहुत करीब, बहुत अनमोल। अगर कभी गुलजार साहब से आपकी मुलाकात हो जाए तो पहला वाक्य आप क्या कहेंगे?

जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और वो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही हैं सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिंदगी हर चीज का जवाब नहीं देती, सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है, जवाब का खोज, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं तो उसे नाराज नहीं दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है उनके तीन पसंदीदा गाने हैं जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन और तुम आ गए हो नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोताएं जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूँ यारों तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कसैली रात के हाथों पर रखती चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ कब से, तेरे आंचल से चेहरा पोंछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अब आ रहा है अगला गाना।

0: ना जो जिसमें बेलें और आयतें वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

अंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है। अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है, और हम उसे अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर जमीन पर ही टिके हैं, इसलिए

वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा, ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं। और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है, उन्होंने कभी अपनी नज्मों से, कभी अपने गीतों से, कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं, गुलजार संजीव कुमार और आर डी बर्मन बेमिसाल जोड़ी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं एक किस्सा कि गुलजार आर डी बर्मन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंचम दुर्गा पूजा के लिए कुछ धुनें बना रहे हैं। गुलजार वहीं बैठ गए और धुनों को सुनने के बीच उन्हें एक धुन बहुत ज्यादा पसंद आई। और उसके अलावा उस धुन को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत पंचम से कहा कि इस धुन का इस्तेमाल वो अपनी एक फिल्म के एक गाने के लिए करना चाहते हैं। और वो जो गाना है वही है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक और कठिन सवाल पूछते हैं कि ये जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये जो किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो बांग्ला गाना कौन सा था जिस पर ये गाना आधारित था? कठिन और आसान दोनों ही, क्योंकि जवाब पता हो तो आसान, नहीं पता हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था ये बताइए। और इसके अलावा ये भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था ये भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ आए हम, किन गलियों को छोड़ आए हम,

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक श्रोता का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले देरी, ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे

बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये गाना बना था। जेते जेते पुथो होले तिरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बम्बई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपा कली, ये हैं सुचित्रा सेन की हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है। मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बम्बई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था जेते जेते पोथो होले दिरी। क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं। कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने और कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता, ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां। एक और श्रोता, राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

और ये आवाज किस भी मिसाल गायक की है। सुरीला सफर, गुलजार स्पेशल, विविध भारती।

0: बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हो, निराश हो या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं, वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां, एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है, एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना भी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम श्रोताओं के कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, ये है कमाल।
1: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की गलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है, राजेश रोशन का संगीत था, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता है जो कहते हैं कि गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया। बताइए क्या कहें हम, किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल, उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं, एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़ा या थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है। कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

0: नदियां मध्यम लगती है।
1: ये फिल्म आपने किस शहर में देखी थी जरा बताएं तो।
0: छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले।
1: और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे?

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना, शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल, सुरीला सफर।

बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है, और जब मौका आता है तो वो यूं भी लिख देते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, फटाफट बताना।

0: धन्नों का गुस्सा और धन्नों की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

0: गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कन्यादान फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, नीरज का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों

0: उसी उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक। यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत 20 अगस्त से 10 सितंबर तक जिलों में कलश रथ यात्रा, 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक समरसता यात्रा आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री आज गुना में बलराम कृषि महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे और उन्नतशील किसानों से संवाद करेंगे। किसानों को कृषि की नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। ये कार्यक्रम कृषि उपज मंडी नानाखेड़ी में आयोजित किया जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों के लिए आयोजित अभ्युदय 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अभिनेता पीयूष मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
1: माखनलाल विश्वविद्यालय में हमारे लेखक, गायक, पत्रकार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा जी और 50 से ज्यादा हस्तियां जिनने विश्वविद्यालय से बढ़कर के अपनी अलग पहचान बनी, उन सबके साथ मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ये उत्कृष्ट संस्थान है देश भर का, देश को क्या दुनिया के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है। माखनलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और कई सारे काम अभी हम करने वाले हैं।
0: इस अवसर पर हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों पर आधारित पुस्तक दो सदी साक्षी सहित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने अविरल मां नर्मदा मिशन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, कृषि एवं वैज्ञानिक अनुसंधान समेत कई क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 1,46,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। भिंड जिले में आज देर रात पिकअप और डंपर की भीषण टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 23 घायल हुए हैं। हादसा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के छीमका गांव के पास हुआ। घायलों को गोहद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जांच में मवेशियों को बचाने के दौरान पिकअप के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। रीवा और बालाघाट समेत 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। जबलपुर में बरगी बांध के 21 में से 9 गेट आज पहली बार खोले गए हैं। बांध से करीब 1031 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। इससे नर्मदा के घाटों तथा तटीय क्षेत्रों में जलस्तर 3 से 4 फीट तक बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं खेल की खबर में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुड्डा और म्यांमार की थेत हतार थोजार के बीच मैच चल रहा है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में शाम को दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेशवा बाजीराव प्रथम की जयंती पर उन्हें नमन किया और उन्होंने रावेरखेड़ी में स्थित उनकी छतरी को उनके अदम्य साहस और गौरवशाली पराक्रम की अमरगाथा बताया। खरगोन में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए 20 अगस्त को खंडवा रोड कार्यालय में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में कलेक्टर डॉ शेर सिंह मीणा ने अधिकारियों को समय सीमा में हैंडपंपों के रखरखाव कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। पन्ना जिले ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन कर संग्रह में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले में अब तक कुल 79,87,185 रुपये का राजस्व ऑनलाइन माध्यम से संग्रहित किया जा चुका है और सिंगरौली जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरस्वती शिशु मंदिर जयंत और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैनी में नशे के दुष्परिणामों के प्रति छात्रों को जागरूक किया गया है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
3: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ

0: इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे, तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
2: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
3: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो

0: ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले

0: में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ, राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो सुनिए इस बातचीत का।

0: पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगान, गंगाजल, अब तक छप्पन, अपहरण, बवंडर, सिंह इज किंग, राउडी राठौर जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है। वो हैं मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ हैं उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है। जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधार टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना, बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
1: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
1: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
3: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
1: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
3: जी,
1: आकाशवाणी जलगांव में?
3: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
1: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
3: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाला था।
1: जी जी।
3: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
1: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
3: बिल्कुल,
1: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कोई ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, किस कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया।
1: जी, और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
2: शुरू हो चुका है ये
1: जी
2: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
1: क्या बात।
2: तो आप वहां भी देख सकते हैं।
1: जी, आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले, जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
3: जी, मैं गलती से जब
1: गलती से मिली यशपाल जी से
3: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेकर चलता हूँ।
1: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। फिर क्या हुआ?
3: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफकोर्स साथ में ही थे। फिर तो लड़ाई लड़ाई चलती रही।
1: अच्छा।

0: पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर ले। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
1: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो 4थी बार किया तब हुआ।
0: अच्छा,
1: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
0: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप लोगों को मिलाया।
1: 3 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में, तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून कि उसमें हमने शुरू किया था, प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय कुलकर्णी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा
0: जी। तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
1: नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते।
0: ओ।
1: तो ठीक है, उसको चल रहने देते हैं थोड़ा सा
0: जी।
1: हाँ, लेकिन एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त।
0: जी जी जी।
1: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
0: अरे अच्छा।
1: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि अपने बाल कर्ली करवा लिए।
0: अच्छा।
1: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया,
2: कुछ तो, ना कुछ करवाते ही रहता।
1: बता रहा था भाई, 400 रुपए बहुत ज्यादा थे उस वक्त, 400 रुपए तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त, तो बोलो 400 रुपए में करवाए हैं बाल कर्ली। तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थे, वो भी अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपए में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात।
0: जी, तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
1: प्रतिभा जी,
2: पिया तो से नैना
0: लगे रे। वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो मैंने उठाया था
0: जी,
1: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
2: वहाँ चल के जाए
1: हॉस्टल से वहाँ तक, तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया जलगांव,
0: अच्छा
1: दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो।
0: अच्छा,
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं हम। बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ। मैंने कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे।
0: अरे
2: तो यशपाल के वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
0: अच्छा,
1: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
1: हुई शाम का

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में, और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे,
0: कौन सा
1: रेपेट्री
0: काम
1: में।
0: था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर
2: नाटकों
1: काम
2: की
1: करते थे,
2: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहां पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती
0: वो
1: रहती।
0: दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
0: जी
1: मारिया।
0: जी यशपाल जी से हम जानना चाहते हैं। अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं? गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी, और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था, तो हम दोनों उसी में रहते थे। और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे, सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
0: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
2: वो,
1: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
0: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम, तो वहाँ हमारे पास पेजर था। पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंट।

0: क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं
1: जी जी,
0: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया तो वो एक लड़की का नाम था,
1: अच्छा
0: क्रिश्चियन लड़की का
1: जी।
0: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने 3.5-4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है, मतलब इसमें वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं,
1: क्या बात है।
0: तो मेरी तो ऐसे ही, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मैंने थैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सेलेक्टेड।
1: क्या बात है, क्या?
0: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए, तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन उसी वक्त, आमिर खान मद्रास में थे, एआर रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए, तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
1: जी जी
0: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है, और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो, मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा, फिर सोचा चलो 40-50,000 में कर लूंगा, अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा।
1: क्या बात है,
0: फिर मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात है,
0: अब देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था, तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया, और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।

0: था कैसे ना।
1: आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
2: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको
1: जी।
2: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से
1: जी।
2: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहाँ से वो सामने गोरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो, और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद्य है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं।
1: अच्छा, क्या बात,
2: गौरी को देखने के बहाने।
1: जी जी।
2: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा, और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई, मैं क्या कर रहा हूँ अब इसके लिए, मैं देश को धोखा दे रहा हूँ, वो एक एहसास हुआ, और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया
1: जी।
2: कुदरती अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
2: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे।
1: जी,
2: ये बहुत अच्छी बात।

0: हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया,
1: बिल्कुल
0: लगान में किया, उन्होंने काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था
1: जी। और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं,
0: बिल्कुल आमिर खान के साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या करना है।
1: बिल्कुल। और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर,
0: लगान का ही सुनवा दो।
2: हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग,
0: कोई हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: नहीं, वो तो नहीं देखनी, यही देखनी,
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब आप बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है
0: जी, नाम बताएं तो।
1: सौम्य, सौम्य शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे हाँ एक मिनट, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो? धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे एक ऐसा हीरो आ गया है जिसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई।

0: ऋतिक
1: कौन
0: रोशन
1: सी
0: की
1: वाली
0: पहली
1: फिल्म
0: फिल्म
1: थी?
0: जो थी
2: कहो ना
1: वो
2: प्यार
1: कहो
2: है,
1: ना
2: है?
1: प्यार है।
2: है? तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान क्या क्या करूं लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई।
1: जी जी जी बिल्कुल। प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है। तो ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा?
0: नहीं,
1: था?
0: हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते
1: कर
0: आए थे। तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी, तब मुझे राजेंद्र कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर। तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे, रघुवीर यादव,
2: रघुवीर यादव,
0: रघुवीर यादव
1: जी
0: उनके दिमाग में थे। पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे, वो क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था। और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
1: जी जी। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे।
0: नहीं, तब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहाँ पे लोकेशन था,
2: मनोर में थी लोकेशन, वहीं होटल ले रखा था हमने।
1: जी जी जी।
2: सब लोगों ने,
1: अच्छा,
2: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वही होटल रहते, वही बाजू में ही गांव था, तो वही करते,
0: लेकिन
2: बच्चे
0: बहुत
2: भी
0: सुंदर,
2: साथ में थे।
0: बहुत सुंदर थी वो
1: जी।
0: फिल्म।
1: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे, और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी?
0: तो उस वक्त तो मतलब छोटे थे ही, ऑफकोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल, और फिर मैं यहाँ से और क्या ही कर सकती हूँ फोन ही कर सकते हैं।
1: बच्चे जब मिलते हाँ। थे रोते थे तो फिर दिल...
0: नहीं, रोते भी थे नहीं थे वो, बड़े उस तरह के
1: अच्छा।
0: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
1: उनको पता था कि
0: उनको पता था
1: पापा को आगे बढ़ना है।
0: पर एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मैके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला
1: जी जी। तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं टेलीविजन
0: हाँ।
1: से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।

0: गुलजार साहब के साथ आपने काम किया है।
1: हाँ, उनके साथ मैंने काम किया तहरीर प्रेमचंद की जो जी सीरीज आई थी प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर। हाँ, तो उसमें मैंने एक तो ठाकुर का कुआं की थी और दूसरा गोदान की थी।
2: पंकज कपूर के साथ
1: कपूर
0: जी
2: थे साथ में काम किया था।
0: और गुलजार साहब का कोई उसमें हस्तक्षेप था? एक्सपीरियंस उनके साथ, कोई बात बताइए उनके साथ अनुभव कुछ।
1: मतलब वो तो जैसे व्हाइट कपड़े पहन के आते थे ना सुबह और शुरू हो जाते थे यहाँ से लकड़ी उठाओ, ये करो, इसको ये ठीक करो। मतलब तो ऐसे देवदूत जैसे लगते थे वो। मतलब उसमें घूम रहे देवदूत स्टेज पे, यहाँ पे, वहां पे। और फिर मुझे जब वो बोलते थे तुम हंस दो बस एक बार बस,
0: अच्छा।
1: मेरा दिन बन जाता है। फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें है वो उनका, वो आलू वहां पे भून के खाना, शकरकंदिया भून के खाना, वहाँ गांव गांव था ना,
2: बड़ा बेटा पेट में था उस वक्त।
1: हाँ, उस वक्त अच्छा, सौम्य पेट में था। हाँ
0: जी,
2: गुलजार साहब का तो ऐसा लगता है जब वो पैदा हुए थे तो भी सफेद कुर्ता पजामा ही था।
0: जी जी,
2: पहने हुए ही पैदा हुए, क्योंकि कभी और ड्रेस में देखा ही नहीं हमने।
0: जबकि गानों के कितने सारे रंग है, उनकी फिल्मों के कितने सारे रंग है, लेकिन उन्होंने खुद पर कोई रंग नहीं डाला। तो अब हम यशपाल जी की फिल्मों की ओर बढ़ते हैं। पहले फिल्मों की बात करें, या हमें लगता है कि हरियाणा की ओर चलते हैं, हिसार की ओर, बचपन की ओर चलते हैं। यशपाल जी बताइए, बचपन में बड़े शरारती किस्म के थे हमने कहीं सुना है, और वो शरारतें क्या थी जरा बताइए हमारे श्रोताओं को भी।
2: हमारी शरारतें क्या होती थी? अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए,
1: मूलियां
2: चुरा ली, गाजरें चुरा ली, मतलब खेती बाड़ी में जो चोरियां कर ली, लोहा चुरा लिया,
0: अरे
2: हैं, लकड़ियां काट के ले आए चोरी से। तो ऐसे ऐसी चोरियां थी हमारी, और ऐसी ऐसी शरारतें थी। बकरी को चराने ले गए, गाय को चराने ले गए, तो वहां से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके, गोबर वगैरह इकट्ठा करके ले आए। हमारा तो इसी में पूरा बचपन बीत गया, खेल पतंगे खेल के, और गेम बहुत खेले हमने बचपन में। आज के बच्चे गेम जानते भी नहीं है, वो लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कटम्बर, लोहा लंबर, कोकला खिपा खिजमे, रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, बहुत सारे ऐसे गेम है जो, फिर वो डिब्बियां, ढक्कन, ये सब खेलते थे हम। बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था। कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा करना, गुठलियां, हाँ, इमली की गुठलियां, वो भी बहुत, हाँ, बहुत कीमती चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती मैं बोलता हूँ, कि बहुत अमीर बचपन में बोलता हूँ इसको, रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे। बेशक पैसा नहीं था, लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूँ अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए। काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
0: बिल्कुल,
2: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस
0: जी,
2: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के, कौन सा था वो
0: है, मालगुड़ी डेज,
2: मालगुड़ी डेज, यस, गालिब का एक सीरियल था,
0: मिर्जा गालिब,
2: फौजी, शाहरुख खान वाला, फिर वो एक दो और थे जो सर्कस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें।
0: तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे, तब उसमें मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के रूप में जानते थे, जैसे
2: हम
0: सीरियल के नाम से, हम लोग, हाँ,
2: यस,
0: हम लोग
2: यस,
0: से याद आया,
2: बुनियाद
0: की बड़की बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते थे। और मुझे लगता है कि आप ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है। मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग

0: किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खास तौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है? तो
1: नहीं, बिल्कुल, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता है ये तो। अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग, और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब तो और ज्यादा खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है
0: जी, जी।
1: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी और शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है।
0: बिल्कुल, नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है?
1: अच्छा, वो बड़े ना खेले छोटे खेल,
0: जी जी
1: हाँ हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है
0: जी।
1: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो, तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया, फिर आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया, तो ऐसा उसका प्रोसेस था और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ
0: जी।
1: मतलब एक दिन मैं करता था, एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो
0: जी,
1: वो हुआ, आइंस्टाइन हुआ या
0: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं, गंगाजल जो शुरुआती फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगाजल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
1: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूँ मैं तो, मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, NSD के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो
0: जी,
1: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है करता हूँ, भी कर ली मैं, बात हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में। बोले हाँ यहीं पढ़ लो, लो। तो मैंने वहां बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने
0: जी।
1: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी, मैं करूंगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज्यादा, और लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे, और हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन क्या एक्चुअली में
0: जी।
1: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया
0: जी।
1: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उसपे
0: जी। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम
1: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है,

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने, आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा, गंगा जल की बात कर रही है, ये भी एक तरीका है बच्चों का।
0: जी जी।
1: मेरी वाइफ भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को गंगा जल, देखने नहीं देती।
0: अच्छा
1: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे मैं,
1: और वाकई में वो पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना, जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानी हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी जी
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत प्यारी फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मुझे, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे, तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे, उन पर पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये कुछ भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा।
0: जी, जी जी, क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाया हम
2: डोली में बिठाई के का।
0: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो भी

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज रहे हैं और ये समय है युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अपना मन पसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपका दोस्त राजवीर।
1: और मैं हूं आपकी होस्ट मान्या। राजवीर, आज सुबह से मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है।
0: अच्छा, कौन सा सवाल मान्या?
1: यही कि सुबह की चाय में चीनी कम थी या ऑफिस में काम ज्यादा। नहीं राजवीर, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच रही थी कि जब हम कुश्ती शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अखाड़ा, ढोल और पहलवान आते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी कंप्यूटर स्क्रीन और साइबर कुश्ती के बारे में सुना है?
0: अरे क्या बात कर रही हो मानिया, साइबर और कुश्ती, ये तो एकदम अनोखा कॉम्बिनेशन लग रहा है।
1: हाँ राजवीर, ये अनोखा तो है और नया भी। राजवीर तुम सोचो कि आखिर ये क्या है, तब तक हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती का खूबसूरत गीत, जिसे गाया था AR रहमान ने। संगीतकार थे AR रहमान और गीतकार थे प्रसून जोशी।
3: और राजवीर, जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे साइबर कुश्ती के बारे में,

0: कोई मजाक नहीं है, NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 15 अगस्त को लॉन्च किया है साइबर कुश्ती 2026।
1: अरे वाह, ये तो देश का एक बहुत बड़ा साइबर सुरक्षा और AI हैकाथॉन लग रहा है।
0: बिल्कुल, और इसे लॉन्च किया है NIELIT के महानिर्देशक प्रोग्राम डॉक्टर M.M. त्रिपाठी जी ने। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है राजवीर? आमतौर पर हैकेथॉन्स जो होती है ना, वो सब सिस्टम की कमियां या बग्स ढूंढने के लिए होती है, जिसे कैप्चर द फ्लैग कहते हैं। लेकिन साइबर कुश्ती में यह देखा जाएगा कि इंसानी दिमाग सही फैसले कैसे लेता है।
1: मतलब सिर्फ गलतियां निकालना ही काफी नहीं है, बल्कि AI द्वारा दी गई आधी अधूरी और उलझाने वाली जानकारियों में से सही फैसला चुनना होगा। क्या बात है, तो चलिए दोस्तों इस बातचीत को और भी मजेदार बनाते हैं इस गीत के साथ।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: आप सुन रहे थे फिल्म स्वदेश का यह गीत, उदित नारायण की आवाज़ में, संगीतकार एआर रहमान, गीतकार जावेद अख्तर। राजवीर प्रोफेसर त्रिपाठी सर ने ना एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा है कि आज के ज़माने में मशीनें मिनटों में सैकड़ों डेटा दे देती है, लेकिन मशीनें ये नहीं बता सकती हैं कि कौन सी समस्या सबसे असली है और किसे पहले ठीक करना चाहिए।
5: बिल्कुल सही बात कही मानिया आपने, इंसानी दिमाग की जगह कोई एआई नहीं ले सकता, और इसी इंसानी समझ को परखने के लिए प्रतियोगियों को इस प्रतिभा में एक जैसा अधूरा पैकेज दिया जाएगा, जिसमें कुछ गलत जानकारी भी होगी। जो टीम सही फैसला लेगी उसे अपने जवाब का बचाव करेगी वही जीतेगी।
4: और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें महंगे टूल्स का कोई चक्कर ही नहीं है। कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर कॉर्पोरेट का बंदा, सब बराबर के स्तर पर मुकाबला कर सकते हैं। तो भाई दिल खोल कर खेलिए। और श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: आप सुन रहे थे फिल्म गुरु का यह गीत। मरियम तोलर और चिन्मय श्रीपता की आवाज़ में गीतकार गुलजार और संगीतकार एआर रहमान।
1: मानिए आप जरा हमारे युवा दोस्तों को इस कुश्ती के नियम और राउंड्स के बारे में बताओ कि आखिर ये आयोजन किस प्रकार रहने वाला है।
0: हाँ बिल्कुल राजवीय, साइबर कुश्ती 2026 में श्रोताओं 3 राउंड्स होंगे। राउंड 1 जिसका नाम अखाड़ा रखा गया है, जो कि 15 सितंबर को होगा और इसका बेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। जो राउंड 2 रहेगा जिसे हम दंगल बुला रहे हैं वो 24 सितंबर, उसका भी बेस ऑनलाइन रहेगा। और जो फाइनल राउंड है जिसे द केसरी राउंड कहा जा रहा है वो 9 अक्टूबर को होगा डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में ऑफलाइन।
1: वाह, अखाड़ा दंगल केसरी नाम तो एकदम देसी और दमदार हैं। नई दिल्ली के फाइनल में टॉप 10 टीमें भिड़ेंगी। चलिए दिल्ली का नाम आया है दोस्तों, तो आपको एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं।

0: दोस्तों ये था फिल्म लाल सिंह चड्ढा का खूबसूरत गीत, जिसे गाया था अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया था प्रीतम ने और गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य।
1: वेलकम बैक श्रोताओं, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे साइबर कुश्ती 2026 के बारे में। राजवीर, क्या तुम्हें पता है जीतने वालों को क्या मिलने वाला है?
0: ट्रॉफी मिलेगी और क्या।
1: सिर्फ ट्रॉफी नहीं, जीतने वाली टीम को मिलेगा साइबर केसरी 2026 का एक खिताब और एक पारंपरिक गदा, और रनर अप्स को मिलेगा रुस्तम और पहलवान की खिताब।
0: अरे वाह, गदा भी मिलेगी सच में?
1: हाँ।
0: ये तो एकदम असली पहलवानों वाली फीलिंग देगा।
1: बिल्कुल राजवीर।
0: सबसे अलग बात यह है कि प्रतियोगिता में सबसे शिक्षाप्रद गलत उत्तर के लिए भी एक स्पेशल अवार्ड है, ताकि लोग गलतियों से भी सीखें।
1: कितना कमाल का आइडिया है ना श्रोताओं, जीत हो या हार कोशिश करना जरूरी है। इसी बात पर चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: तो दोस्तों ये था फिल्म फना का खूबसूरत गीत, जिसे गाया था सोनू निगम, सुनिधि चौहान ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने और गीतकार थे प्रसून जोशी। मानिए हमारे जो यंग लिसनर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं युववाणी सुन रहे हैं, वे सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर शामिल कैसे हों।
1: राजवीर, ये यहाँ पर जो है शामिल होना बहुत आसान है, आई टेल यू। इसमें भाग लेना बिल्कुल मुफ्त है। 3 लोगों की टीम बनाकर छात्र और रिसर्चर्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से शुरू हो चुके थे और इनकी जो आखिरी तारीख है वो 10th of September 2026, मतलब 10 सितंबर 2026 तक है।
0: बिल्कुल, और साथ ही दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, ये पूरी प्रतियोगिता एक सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में होगी। किसी भी लाइव सिस्टम या थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। SERT इसका नॉलेज पार्टनर है और ISEC फाउंडेशन के सहयोग से ये आयोजित हो रहा है।
1: तो हमारे जितने भी यंग लिसनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इसमें मुकाबला करना चाहते हैं, देर किस बात की, अपनी टीम बनाइए और रजिस्टर करिए। चलिए युवाओं, इसी जोश के नाम सुनते हैं एक और गीत।
2: दिन दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दि

0: श्रोताओं, आपने अभी सुना फिल्म करीब से यह गीत। कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ में संगीतकार अनु मलिक और गीतकार राहत इंदौरी। राजवीर, ये जो हैकेथॉन की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम साइबर कुश्ती 2026 बोल रहे हैं, यानी कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और इंटेलिजेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एक हिस्सा है।
1: सही कहा मान्या। NIELIT केवल पढ़ाई नहीं कराता, बल्कि देश के लाखों युवाओं को नई तकनीकों में कुशल बना रहा है। इसे डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है और इसका मुख्य कैंपस रोपड़ में है।
0: बिल्कुल, श्रोताओं, डिजिटल इंडिया को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए ऐसी पहल बहुत जरूरी है। हमारी डिजिटल आज़ादी को सुरक्षित रखने का ही बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो चलिए श्रोताओं, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक और मधुर गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म जब वी मेट का ये बहुत ही मधुर गीत। शान और सुल्तान खान की आवाज़ में गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम। इसी के साथ श्रोताओं, आज की शाम सिर्फ वही शाम नहीं है, आज यानी कि 18 अगस्त का यह दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरी और साहसी अक्षरों से लिखा हुआ दिन है।
1: बिल्कुल सही कहा मान्या। आज का दिन समर्पित है भारत माता के उस अमर सपूत को, जिसकी वीरता की कहानियों से सन 1965 का युद्ध आज भी गूंजता है। आज परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के महान नायक लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर तारापोर की जयंती है।
0: अरे राजवीर, जब भी मैं कर्नल तारापोर का नाम सुनती हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हो पता है क्या है? उनके खून में ही शौर्य बसा था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के महान योद्धा रतन जीबा के वंशज थे। यानी वो वीर छत्रपति के मावलों वाली वीरता की विरासत अपने साथ लेके पैदा हुए थे।
1: क्या बात है मान्या। इसीलिए 18 अगस्त 1923 को मुंबई में जन्मे कर्नल तारापोर की रग रग में देश प्रेम दौड़ता था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्हें सियालकोट सेक्टर के सबसे रणनीतिक और चुनौतीपूर्ण इलाके फिल्लोरा का कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
0: और श्रोताओं, दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंकों की सबसे बड़ी और सबसे भयानक लड़ाई 1965 के इसी युद्ध में लड़ी गई थी। सितंबर 11 से लेकर सितंबर 16, 1965 के बीच जब दुश्मनों की तरफ से टैंकों की बौछार हो रही थी, तब कर्नल तारापोर बिना डरे अपनी टैंक की कमान संभाले बस आगे खड़े हुए थे।
1: और मान्या, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि साहब, आप अस्पताल चलिए और इलाज कराइए, लेकिन कर्नल तारापोर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मेरी रेजिमेंट मैदान में है, उनका कमान संभालने वाला पीछे नहीं हटेगा।
0: कितनी वीरता वाली बात है ना राजवीर।
1: बिल्कुल,
0: इसे कहते हैं असली लीडरशिप। घायल होने के बावजूद उन्होंने मोर्चे पर डटे रहकर अपनी टुकड़ी का हौसला बढ़ाया। उनकी इसी प्रेरणा का नतीजा था कि पूना हॉर्स के चपास सैनिकों ने दुश्मन के करीब 60 पेटन टैंकों को चकना चूर कर दिया। और भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ जानते हो? सिर्फ और सिर्फ 9 टैंक।
1: दुश्मन भी स्तब्ध रह गया था देखकर ये मान्या। लेकिन सितंबर 16, 1965 को बुतूर डोंगरांडी में जब वो अपनी इन्फेंट्री पैदल सेना को सपोर्ट देने के लिए टैंक के साथ डटे हुए थे, तभी दुश्मन का एक तोप का गोला सीधे उनके टैंक पर आ गिरा और भारत माँ का ये वीर योद्धा युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गया।
0: श्रोताओं, कर्नल तारापोर ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनकी इसी असाधारण साहस, अटूट नेतृत्व और अदम्य वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
1: दोस्तों, आज के युवाओं को हमारे इन असली नायकों की कहानियां जरूर जाननी चाहिए। अगर आप देश के इन जाबाज सैनिकों के बारे में गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह का हमारा युववाणी के खास कार्यक्रम को देखते रहिए और सुनते रहिए।
0: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले गीत की ओर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार। शाम का यह समय भी कितना अद्भुत होता है ना। दिन भर की आपाधापी, भाग दौड़ और मानसिक थकावट के बाद जब ढलता हुआ सूरज आसमान में नारंगी किरणें बिखेरता है तो मन खुद ब खुद थोड़ा ठहरना चाहता है। आकाशवाणी उज्जैन के इस शाम के सुहाने पड़ाव पर मैं हूं आपका दोस्त दुर्गा शंकर सूर्यवंशी और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, आज की शाम हम सब मिलकर याद करेंगे प्रभु श्री राम को। कहते हैं ना कि शाम के वक्त अगर थोड़े समय के लिए भी राम नाम ले लिया जाए तो दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाती है और मन एकदम शांत हो जाता है। तो चलिए आज की इस शाम को संगीतमय बनाते हैं और सबसे पहले सुनते हैं यह सुमधुर रामधुन।

आ हा हा हा कितनी मिठास है इस धुन में। सचमुच राम नाम सुनते ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, और जब बात राजा राम की हो तो अवधपुरी का वो सुंदर सा नज़ारा आँखों के सामने आ जाता है। आइए इसी सहज और सुंदर भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का अगला भजन।

श्रोताओं, जब हम कामकाज से फुर्सत पाकर घर लौटते हैं और रेडियो पर ऐसे भजन सुनते हैं तो लगता है जैसे अपनों के बीच बैठकर कोई सीधी सच्ची बात हो रही हो। राम जी का नाम ही ऐसा है जिसे जितनी बार भी सुनो मन भरता ही नहीं है। तो चलिए एक बार फिर राम नाम के इसी रस में डूबते हैं और सुनते हैं एक और प्यारी सी राम धुन।

श्रोताओं, इस गीत को सुनकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। दोस्तों, जब भी अयोध्या का नाम आता है तो मन अपने आप झूमने लगता है। अयोध्या में राम जी का आना हर भक्त के लिए एक उत्सव जैसा होता है, एक ऐसा लम्हा जिसका इंतजार हर दिल को था। तो आइए इसी खुशी और इंतजार के सुंदर भाव को समेटे हुए सुनते हैं यह बेहद लोकप्रिय गीत।

क्या बात है। इस गीत को सुनकर तो मन बस यही कहता है कि इस गीत को बार बार सुनते रहें। श्रोताओं, समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चला। आज की हमारी भजन संध्या अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है, लेकिन जाने से पहले आइए आज की शाम को एक जबरदस्त और भक्तिमयी ऊर्जा के साथ विराम देते हैं। सुनते हैं आज का अंतिम भजन।

भक्ति चिंतन और समर्पण से भरे इन सुरीले भजनों के साथ अब समय हो चुका है आपसे विदाई लेने का। अब अपने दोस्त दुर्गा शंकर सूर्यवंशी को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए अपने पसंदीदा आकाशवाणी उज्जैन को।

0: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी भैया बहन खो आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब नौने हुओ। देखो का है कि भैया बहन हरों आज के समय में पुरानी तकनीकन को छोड़ के नए नए तरीका खेती के किसानी के अपनाए जान लगे हैं। इकिला ने भारत सरकार की कई सारी योजनाएं सोई वरदान साबित हो रही है। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन भी ऐसी ही एक योजना है जो किसानन के लाने बड़े ही फायदा की योजना है। इसके तहत किसानन को आधुनिक कृषि यंत्र और मशीनें खरीदने के लाने 40 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। छोटे सीमांत महिला एससी और एसटी किसानन को 50% तक को अधिकतम अनुदान मिल जाते हैं। कम लागत में खेती और समय की बचत के लाने जो योजना चलाई जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य है ट्रैक्टर रोटावेटर कल्टीवेटर सीड ड्रिल और थ्रेसर जैसी कृषि उपकरण पे आर्थिक सब्सिडी सहायता प्रदान करवो। कस्टम हायरिंग सेंटर मैंने जो किसान भारी मशीनें नहीं खरीद सकत वे किराए पे उपकरण लेबे के लाने फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर सकत है। खेती में आधुनिक

0: तकनीकन को बढ़ावा देवे के लाने कृषि ड्रोन की मदद से खरीद पर भी वित्तीय सहायता दी जाते है। और इके लाने किसान भैया बहने आधिकारिक पोर्टल जैसे के एग्री मशीनरी पोर्टल या अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। चयन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में भेजी जाते है। और आज हम बड़ी ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं आपके लाने। देखो का है कि भैया बहनहरों, दुधारू पशुओं में परजीवी जैसे कि कीड़ा है, किलनी है, जू है, जो पशुओं को खून चूस लेते हैं और इसे दूध की पैदावार घट जाते हैं, मवेशियों को वजन कम होने लगता है और पशु बीमार पड़ जाते हैं। सो ई के नियंत्रण के लाने पशुओं को बीमारियों से बचावे के लाने अपन कौन से उपाय कर सकते हैं, ई के संबंध में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है डॉक्टर ज्योति जैन से अंशु तिलेठे बैन की जो बातचीत, विषय है दुधारू पशुओं में परजीवी नियंत्रण।
1: नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे पशुधन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सही देखभाल सही समय पर करना अति आवश्यक होता है। इंसानों की तरह इन्हें भी सही उपचार और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसी संबंध में आज हम पशुओं में बाह्य परजीवी एवं इनके नियंत्रण विषय पर विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए हैं डॉक्टर ज्योति जैन। आप अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन विभाग भोपाल से हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: जैसा कि मैम हमने विषय लिया है तो सबसे पहले हमारे किसान भाई आपसे यही जानना चाहेंगे कि पशुओं में बाह्य परजीवी नियंत्रण होता क्या है।
2: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा देश आज विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, किंतु साथ ही हमारे पशुओं की जो पर पशु जो उत्पादकता है वो बहुत कम है और इसका कारण जीवाणु एवं विषाणु जनित बीमारियों के साथ परजीवी जनित बीमारियां भी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और इसी तारतम्य में हम आपसे जानना चाहेंगे कि परजीवी किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।
2: जो जीव अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन और अपने निवास के लिए पशुओं के शरीर के ऊपर निवास करते हैं, जैसे कि उनकी त्वचा पर, उनके बालों पर, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरे होते हैं अंतः परजीवी, जो कि पशुओं के शरीर के अंदर निवास करते हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बाह्य परजीवी कौन कौन से होते हैं और किस तरह से पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
2: बाह्य परजीवी में टिक्स, जिसे कि हिंदी में चीचड़, किलनी या गिचोड़ी भी कहते हैं, दूसरे जू या जुए या जिन्हें लाइस भी कहते हैं, तीसरे फ्लीस जिन्हें पिस्सू भी कहते हैं, और चौथे होते हैं माइट्स। और ये चारों प्रकार के जो बाह्य परजीवी हैं पशुओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत गंभीर बीमारियां हैं, उन बीमारियों का ये परिसंचरण करते हैं। जैसे कि जो टिक्स होती है पशुओं में होने वाली, बवेशियोसिस की बीमारी, थाइलेरोसिस की बीमारी, एक ट्रिप्स की बीमारी जिसे सर्रा रोग भी कहते हैं, इसको फैलाने के लिए जो किलनी या चीचड़ होते हैं उसका बहुत रोल होता है। और अभी हाल ही में पशुओं में एक लंपी स्किन डिजीज की बीमारी फैली हुई थी। बीमारी तो वायरस से होती है लेकिन उसको मच्छर जो है वो फैलाने में बहुत सहायता कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। और बाह्य परजीवी जो पशुओं की स्किन में होते हैं तो स्किन को वो काटते रहते हैं, उनका खून चूसते हैं जिससे घाव बन जाता है। और एक जो मान लो टिक है जैसे, तो वो कम से कम 0.5 से 2 औंस तक के पशु का खून चूस लेती है। तो अब समझ लो एक पशु में अगर 10,000 से 20,000 टिक्स होंगी तो वो कितना खून चूसेंगी। तो इसलिए पशुओं में खून की बीमारी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, त्वचा से संबंधित बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो जाते हैं। और उनमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उनकी पूरी स्किन ही खराब हो जाएगी, पशु पूरे समय बेचैन रहेगा, उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वजन में कमी होगी, प्रजनन क्षमता में कमी आएगी। तो आप देखिए ना कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये हमारे पशुओं को।
1: बाह्य परजीवी का नियंत्रण कैसे किया जाए और इसके अलावा और कौन कौन से परजीवी इन पर आक्रमण कर सकते हैं।
2: बाह्य परजीवियों के लिए बहुत सारी नियंत्रण की विधियां हैं, मैं एक एक करके बताना चाहूंगी। कुछ रासायनिक उपचार भी होते हैं तो उसमें अमितराज या डेल्टा मैथ्रिन, साइपर मैथ्रिन जैसी दवाइयां हैं जिनको कि उचित डाइल्यूशन कर

0: के शरीर पे स्प्रे किया जाता है, जिसे कि छिड़काव विधि भी कहते हैं। अगर पशु कम संख्या में है तो अपन स्प्रे या छिड़काव विधि यूज कर सकते हैं, अगर पशु ज्यादा में है तो डुबकी विधि या जिसे डिप भी कहते हैं वो भी कर सकते हैं। एक 6 फीट बाय 12 फीट का एक टैंक बनाते हैं और उसमें सॉल्यूशन बना के उसमें पशु को डिप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना है कि पशु का सिर वाला जो हिस्सा है, नाक कान मुंह, उसको दूर रखना है और उसमें डिप करके निकाल लेते हैं। ये विधि भी होती है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाले रासायनिक उपचार कर तो सकते हैं, लेकिन आप पशु चिकित्सक की देखभाल में ही करें, है ना। कभी कभी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इसलिए अपने से ना करें, पशु चिकित्सक से सलाह लें। इसके अलावा आजकल पोरॉन लिक्विड आते हैं जो कि पशुओं की रीढ़ की हड्डी पे एक ड्रॉप के रूप में डाल दिए जाते हैं, वो भी होता है। इसके अलावा कुछ पाउडर भी होते हैं जो कि राख में मिला के पशु के शरीर पर रगड़वा देते हैं, जैसे एक पोछा टाइप का लगवा देते हैं। और एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो भी मेथड आप उपयोग करेंगे वो धूप के समय ही करना है। ध्यान रखना है कि पशु उस चीज को चाटे ना। और जो भी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि कीटनाशक दवाइयां, तो पशु जहां रहता है, जहां उसका शेड है, वहां क्रैक्स है या दरारें हैं, उनमें भी करना है, क्योंकि अगर वहाँ उसके अंडे वगैरह रह गए तो वो फिर से पनप जाएगा।
1: और जड़ से मिटाने के लिए,
0: ये उपाय अपने को करना है। और कुछ किसान भाइयों ने पहले भी मुझसे पूछा था कि मैडम कुछ परंपरागत उपचार हो तो वो बता दे, तो मैं बाह्य परजीवी के लिए बता देती हूँ कि लहसुन की कलियां आपको 10 नग लेना है, है ना। नीम की पत्तियां 1 मुट्ठी, नीम का फल या बीज 1 मुट्ठी, फिर बच आता है पाउडर 10 ग्राम वो ले लेंगे, हल्दी पाउडर 20 ग्राम, और लंटाना जिसे कि अपन हिंदी में रायमुनिया भी कहते हैं, कुछ लोग चतुरंगी भी कहते हैं, उसकी पत्तियां 1 मुट्ठी ले लेंगे, तुलसी की पत्तियां 1 मुट्ठी, और इन सबको पीस लेंगे। पीस के इसमें 1 लीटर पानी मिला के एक स्प्रे की बोतल में भर लेना है और जहां जहां पे किलनी वगैरह लगी है वहां पे उसका छिड़काव करना है। हफ्ते में एक बार करना है, जब तक कि परजीवी नष्ट नहीं हो जाते तब तक के उपचार करेंगे तो ये टॉक्सिक भी नहीं होगा और सबके सब चीजें घर में उपलब्ध रहेंगी
1: ऑर्गेनिक तरीके से।
0: हाँ।
1: आगे बढ़ेंगे मैम, आपसे जानेंगे कि इसके अलावा और कौन से परजीवी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे पशुओं को।
0: देखिए, अभी अपन ने बाह्य परजीवी के बारे में बात करी जो कि पशु के शरीर के बाहर थे। अब इसके बाद अपन अंतः परजीवी की बात करेंगे जो कि पशु के शरीर के अंदर होते हैं और ये पशु के पाचन तंत्र में भी हो सकते हैं, ब्लड में भी हो सकते हैं, आंखों में भी हो सकते हैं, श्वसन तंत्र में भी हो सकते हैं, हर कहीं ये रहते हैं। और ये जो अंतः परजीवी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। गोलकृमि, जिन्हें कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में पटारे भी कहते हैं। दूसरा होता है चपटे कृमि, जो लंबे लंबे रिबिन के जैसे फीता कृमि उस तरह से निकलते हैं। और एक होते हैं क्यूलेक्स, जो कि पत्ती के जैसे होते हैं। तो ये इस 3 तरह से अंतः परजीवी 3 प्रकार के होते हैं।
1: मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंतः परजीवी की दवा किस उम्र में देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए।
0: अंतः परजीवी की दवा सबसे पहले, अगर आपका बछिया या बछड़ा जो भी छोटा है उसको 10 से 15 दिन की उम्र में पहली बार देना है, 6 महीने की उम्र तक के हर महीने देना है, और 6 महीने की उम्र के बाद साल में 2 बार उसको देना ही है, और पर्टिकुलरली बारिश के पहले और बारिश के बाद में जरूर देना है, क्योंकि बारिश के समय क्या होता है, स्नेल जिसे घोंघा भी कहते हैं वो निकलता है, और पशुओं को ये समझ नहीं होती कि हम घास ही खाएं, घोंघा ना खाएं, उसके साथ वो भी खा जाते हैं, उसके अंदर लाखों की संख्या में कृमि के अंडे भरे होते हैं और वो अंदर जाके पूरे पनप जाते हैं। और अगर आपका पशु गाभिन है तो उसे प्रसव के तुरंत बाद देना है कृमिनाशक दवाई, और प्रसव के 1.5 महीने बाद भी उसको दवाई दे सकते,
1: उससे नियंत्रण किया जा सकता। अच्छा मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं पशुओं के देखभाल और उपचार के लिए, तो एक महत्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में आती है, क्या पशुओं के लिए टीकाकरण से संबंधित भी कुछ है इस मौसम में कि टीकाकरण करवा दें तो वो सुरक्षित रह सकते हैं।
0: यस मैडम, बिल्कुल है। देखिए, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के समय में गलघोटू या घटसर्प, जिसे कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, एक वो बीमारी, और दूसरी एक ब्लैक क्वार्टर जिसे कि लंगड़ा बुखार या चुरका रोग भी कहते हैं, ये 2 बीमारियां होने की संभावना होती है, और ये दोनों बीमारियां जानलेवा हैं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करती हूँ कि वो पशुपालन विभाग से संपर्क करके इन दोनों बीमारियों का टीका

0: बारिश आने से पहले ही लगवा लेना चाहिए, और अगर अभी भी नहीं लग पाया है तो अभी संपर्क करके अभी भी लगवा सकते हैं। और इन बीमारियों के टीके विभाग के द्वारा बिल्कुल भी निशुल्क लगाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर आप टीका लगा लेंगे तो इन जानलेवा बीमारियों से आपका पशु बचा रहेगा, और आपको जो आर्थिक हानि होती अगर ये बीमारियां हो जाती उससे भी आप बचे रहेंगे। तो आप देखिए ना, एक छोटा सा टीका लगवा लेने से आपको कितना आर्थिक लाभ होने वाला है और आपका पशु स्वस्थ रहेगा।
1: जी मैम, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगी पशुओं के बाह्य परजीवी नियंत्रण विषय पर?
0: मैं अपने किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगी कि किसान भाइयों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, और यह जो मौसम होता है, इस मौसम में जो आर्द्रता होती है और तापमान में जो उतार चढ़ाव होता है, ये बाह्य परजीवियों के पनपने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। तो इसलिए अपने को बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलरली बारिश के मौसम में आप बहुत ध्यान रखें। आपकी अगर गौशाला में जो भी दरारें हैं उनको भरवा दें, गौशाला में चूना की पुताई करवा लें, और जो पानी की टंकी उसमें भी चूना की पुताई करवा दें। आसपास अगर भराव वाले क्षेत्र हैं तो उसमें भी कृमिनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाइए और बाह्य परजीवियों से बचाइए। और कुछ मेथड मैंने बताए, जैसे कि आजकल तो पोरॉन, मतलब शरीर पर डाल दो, दो तीन बूंद, उससे भी बाह्य परजीवी निकल जाते हैं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ परंपरागत औषधि भी है, है ना, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो अपने पशु को बाह्य परजीवी से बचाएं ताकि बबेशिया, थाइलेरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, लंपी स्किन डिजीज जैसी जो बीमारियां हैं जो कि ये बाह्य परजीवी उसको फैलाते हैं, उससे आपका पशु सुरक्षित रहेगा, निश्चित ही आपके आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी।
1: जी मैम, किसान भाइयों, हमें आशा और उम्मीद है कि पशुओं में बाह्य परजीवी नियंत्रण विषय की ये उपयोगी जानकारी आपको फायदा पहुंचाएगी और हम अपने पशुओं को सुरक्षित और स्वस्थ रख पाएंगे। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: देखो भैया बहनों, जो बड़ी ही अच्छी जानकारी डॉक्टर ज्योति जैन ने दी दुधारू पशुओं में परजीवी नियंत्रण ई विषय पे, इनसे बातचीत करी हती अंशु तिलेठे बहन ने। और अब कछु मनोरंजन हो जाए, सो चलो अब अपन सुनत है नारायण सिंह कुशवाहा और संगी साथियों को गाओ भोजो साउंड गीत।

0: भैया बहनाहरों, आजकल नैनो यूरिया को प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन ई के इस्तेमाल और प्रभाव को लेकर किसान भैया बहनन के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। सो ई के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो लघु वार्ता। नैनो यूरिया विशेषज्ञ है डॉक्टर उदय बड़गांवकर।
1: नमस्कार किसान भाइयों, उदय बड़गांवकर प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नैनो यूरिया के बारे में आज बात करना चाहूंगा, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण खाद है और इसकी काफी जरूरत किसानों को पड़ती है, लेकिन चूंकि मिल नहीं पा रहा है तो इसका एक अल्टरनेट क्या हो सकता है, वो नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया के बारे में आप लोगों ने भी काफी कुछ सुना ही होगा, लेकिन इसका इतना उपयोग किसानों के स्तर पर इस नैनो यूरिया का उपयोग उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है, और मैं इसी बारे में आपकी कुछ भ्रांतियां दूर करना चाहूंगा कि नैनो यूरिया कुछ किसान भाइयों को लगता है कि वो इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नैनो यूरिया काफी प्रभावी है और नैनो यूरिया की एक 500 ml की बोतल आपका एक एकड़ का काम कर सकती है, यानी 45 kg बोरे में

0: यूरिया होता है उसमें जितना नाइट्रोजन मिलता है उतना ही नाइट्रोजन आपको 500 ml की एक बोतल नैनो यूरिया की दे सकती है। तो खासतौर पर इसका उपयोग आप निश्चित रूप से करना, यदि आपने नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसका उपयोग करें, क्योंकि यूरिया की जो आपकी परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनसे काफी हद तक आपको मुक्ति भी मिल सकती है। और जहां तक नैनो यूरिया के डोज बनाने की बात है, तो इसमें साधारणतया 4 ml तक का नैनो यूरिया 1 लीटर पानी में लगता है, यानी पर एकड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से यदि एप्लीकेशन की बात करें तो करीब 250 से लेके 500 ml तक का यूरिया जो है वो 125 से लेकर 150 लीटर पानी में घोला जा सकता है। और इसके अलावा यदि किचन गार्डन की हम बात करें तो 2 ml की मात्रा जो है वो 1 लीटर पानी में लगती है। इस हिसाब से यदि आप मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद में इसका स्प्रे आप अपनी फसलों पर कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। खासतौर पर फर्स्ट स्प्रे जो करेंगे वो साधारण जो फसलें हैं उसमें 30 से 35 दिन बोनी के बाद में की जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्प्रे है वो फ्लावरिंग जब होने लगती है फसलों में तो उसके 20 से 25 दिन के आसपास तब भी उसको अप्लाई करना है। और जो इसको अप्लाई करने की विधि रहेगी उसमें पहले तो बॉटल को आप अच्छे तरीके से शेक कर लें और उसके बाद में किसी फ्लैट फैन या फिर जो कट नोजल आता है उसकी सहायता से मिस्ट बनाते हुए और इस नैनो यूरिया को आप जो है वो अपने खेत में या अपने किचन गार्डन में भी छिड़काव कर सकते हैं। खासतौर पर ध्यान ये रखना है कि या तो पत्तियां जो हैं वो सूखी हुई हों, यदि बहुत ज्यादा गीली हुई हों तो वो फर्टिलाइजर आपका बेकार भी जा सकता है, और दूसरा यदि उस पे जम जाएगा तो पत्तियों को जला भी सकता है। इसलिए उन चीजों से बचने के लिए खासतौर पे एकदम सुबह का वक्त जो है वो अवॉइड करें, बिल्कुल सुबह का बहुत ज्यादा वक्त, क्योंकि उस समय उसमें पौधों पर ओस भी जमी हुई होती है। और बहुत ज्यादा यदि तापमान हो तो उस समय दिन का समय भी अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे में जो आप यूरिया नैनो अप्लाई करेंगे या डालेंगे वो उसका वाष्पीकरण ज्यादा हो सकता है और वो उतना काम आपके नहीं आएगा। तो इस तरह से नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे आप तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और खासतौर पे अच्छे परिणाम मिलेंगे। और खासतौर पे यूरिया की कमी को लेकर जो आप परेशानियां सहन कर रहे हैं, जो परेशानियां आपके समक्ष आ रही हैं, उन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि नैनो यूरिया के उपयोग की ओर निश्चित रूप से बढ़े। इफको का नैनो यूरिया आता है, इसके अलावा भी और भी नैनो यूरिया हैं। और फोलियर एप्लीकेशन खासतौर पर नैनो यूरिया का जो छिड़काव होगा वो फोलियर एप्लीकेशन होगा, वो सीधे सॉइल में नहीं देना है। और इस तरह से अब इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे और जैसा कि मैंने नोजल का बताया है कि या तो आप फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करें या कट नोजल का उपयोग करें तो आपका स्प्रे जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। और जैसा एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि 45 kg की यूरिया की जो बोरी होती है उसमें जितना नाइट्रोजन आपको या जितना नाइट्रोजन आपको मिलता है उतना ही नाइट्रोजन आपको एक 500 ml नैनो यूरिया की बोतल प्रदान कर देगी और आपकी फसलों का जो नाइट्रोजन की आवश्यकता का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी जो लघु वार्ता नैनो यूरिया ई विषय पे विशेषज्ञ हते डॉक्टर उदय बड़गांवकर। भैया बहनों, आज के समय में सरकार हमारे किसान भैया बहनों के लाने कई सुविधाएं दे रही है। एम किसान पोर्टल भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक ऐसी पहल है जो किसानन को मोबाइल संदेशन के जरिए कृषि सलाह, मौसम की जानकारी और बाजार भाव उपलब्ध करात। इको आधिकारिक एम किसान पोर्टल पर देखो जा सकत है। एम किसान पोर्टल मोबाइल संदेश के माध्यम से किसानन को उनकी भाषा में टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के जरिए कृषि संबंधी सूचनाएं दे देते हैं। कृषि सलाह मने फसल की देखरेख, खाद और कीट नियंत्रण से जुड़ी जानकारी भी समय समय पे दे दी जात है। किसान पंजीकरण के लाने किसान भैया बहन पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर और विवरण दर्ज करके इन सेवाओं को लाभ ले सकते हैं। जिते मौसम जल्दी बदलत है और सिंचाई की दिक्कत रह होते हैं उतक एम किसान पोर्टल के जरिए बस कार्य की और सूखे की सही जानकारी सूचना मिल जाते हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण की सब्सिडी वाले नोटिफिकेशन भी मोबाइल पे मिल जाते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने आप और उनको दी वे आपके काम में आए और खेती किसानी के लाने सरकार की सभी योजनाओं को आप और भी फायदा उठा पे हो। और ई के संग आज को किसान वाणी कार्यक्रम हम इतना ही समाप्त करते हैं। सो स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं और अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया दो दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
3: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
2: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद JJMP के चार

0: उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देश भर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको संध्याकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और मालवी गीत। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत। उर्दू कार्यक्रम कहकशा का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। रात 10:00 पेश करेंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी देते हैं। कल सुबह 5:52 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6:05 पर सुनिएगा विविध भारती मुंबई से वंदन वार। 6:35 पर अनुप्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता का अनुप्रसारण होगा सुबह 6:45 पर। सुबह 7:00 आकाशवाणी उज्जैन से होगा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। 7:20 पर उज्जैन की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे सुप्रभात उज्जैन में। उज्जैनी आरजे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। 10:00 आपके लिए हम लेकर आएंगे उज्जैन दर्शन। 10:30 पर महिला सभा का प्रसारण होगा। सुबह 11:00 से विविध भारती मुंबई का अनुप्रसारण होगा। कार्यक्रम होगा रंग तरंग। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर और दोपहर 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम आप सभी सुन पाएंगे। दोपहर 2:00 आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत। सदाबहार नगमे पेश किए जाएंगे दोपहर 2:30 पर। सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली लेकर आएंगे दोपहर 3:00। शाम 4:00 आप सुनेंगे आज के मेहमान। शाम 5:00 आकाशवाणी उज्जैन से सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। भजन संध्या का कार्यक्रम होगा शाम 6:00। शाम 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम माटेरी बात, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और निमाड़ी लोकगीत। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म

कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। रात 10 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन है। शाम के 7:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज नर्मदा संरक्षण के लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कैलारस सबलगढ़ वीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कल मैहर में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे और बीना रिफाइनरी से सेना के लिए -42 डिग्री तक न जमने वाले विशेष डीजल की पहली खेप रवाना हुई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा नदी के जल को अविरल बनाए रखने के लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विकास, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रगति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 1,46,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि आने वाले समय में एक्सप्रेसवे और अन्य बड़ी सड़क परियोजनाओं के संचालन के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पद बनाने की मंजूरी भी दी गई है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेजी के साथ काम हो रहा है, आगामी एक वर्ष में बहुत अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे, ऐसी रोड्स जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया, वो सब भी मध्य प्रदेश में लिए जाने वाले, और ये ठीक तरीके से संचालित हो सके तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। 7 जो पहले के पद है उनकी निरंतरता के संदर्भ में भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलारस सबलगढ़ वीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ग्वालियर कैलारस मेमू ट्रेन का वीरपुर स्टेशन तक विस्तार भी शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई रेल सुविधा से क्षेत्र के लोगों का आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय 1,18,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि सागर में 100 करोड़ रुपये की लागत से गुरु रविदास जी का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा।
2: इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। इसीलिए अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल एयरपोर्ट बनता है तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है, और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।

0: हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो धाम बनकर के तैयार है, हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय रखा गया है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि AI, क्वांटम तकनीकी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल उपकरण शासन व्यवस्था में तेजी से बदलाव ला रहे हैं। नई दिल्ली में लेटरल एंट्री से नियुक्त संयुक्त सचिवों के 15 दिन के रिफ्रेशर कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने अधिकारियों के लिए लगातार सीखने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी संवाद जिम्मेदार शासन के लिए जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया सहित बदलते संचार माध्यमों को देखते हुए अधिकारियों के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना महत्वपूर्ण है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल मैहर में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। वे प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा पात्र बहनों के बैंक खातों में 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे, जिसके माध्यम से हर लाभार्थी के खाते में 1,750 रुपए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान मैहर में 256 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। भारत की प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ईसा याह अरुमैना यागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। वहीं एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग एक परिवार की तरह हैं और सभी मिलकर देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ICAR की 97वीं वार्षिक बैठक में वैज्ञानिकों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के कृषि एवं पशुपालन मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में श्री चौहान ने कहा कि अब बीज से उत्पादन, उत्पादन से प्रसंस्करण और खेत से वैश्विक बाजार तक पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता खेत से होकर जाता है और इसमें ICAR के वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बैठक में राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भाग लिया। सागर जिले की बीना रिफाइनरी से भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंड में भी न जमने वाले विशेष डीजल की पहली वाणिज्यिक खेप आज रवाना की गई। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल -42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी तरल रहता है। 49 वैगन में करीब 32 लाख डीजल भटिंडा भेजा गया है, जहां से इसकी आपूर्ति दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैन्य इकाइयों को की जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। पूर्वी हिस्से में बने स्ट्रांग सिस्टम के असर से रीवा और बालाघाट समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं रीवा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। मुरैना में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के दौरान खुदाई में 1913 के पुराने चांदी के सिक्के मिलने का मामला सामने आया है। ग्राम डोंगरपुर लोधा के पास खुदाई के दौरान ग्रामीणों और JCB संचालक को सिक्के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। सिक्कों पर जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर और 1913 लिखा हुआ है। एक सिक्के का वजन करीब 11.6 ग्राम और उसमें लगभग 91% चांदी बताई गई है। प्रशासन ने पुलिस को सिक्के बरामद कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सिक्कों की संख्या और उनकी ऐतिहासिक जानकारी के लिए जाँच की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में DPC अमरनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि 30 नए स्कूल भवनों के निर्माण और 44 जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार की स्वीकृति मिली है। नए भवनों के लिए 25% राशि का आवंटन भी हो चुका है। बुरहानपुर शहर की पहली डाक कांवड़ यात्रा के दौरान 25 श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर

से नर्मदा जल लेकर महज 9 घंटे में बुरहानपुर तक की यात्रा पूरी की। नर्मदापुरम जिले के पचवड़ी में आयोजित 10 दिवसीय ऐतिहासिक नागद्वारी मेले का समापन हुआ, जिसमें 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आगरमालवा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने एथेनॉल उद्योग इकाई का निरीक्षण कर जल नमूनों और गुणवत्ता का जायजा लिया। भोपाल स्थित एम्स के बाल रोग विभाग और सेट समिति ने आमजनों को बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी सरल भाषा में देने के लिए बाल चिकित्सा स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र का शुभारंभ किया। अशोकनगर में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी ने 187 आवेदकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिशा निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए और नर्मदापुरम जिले में निर्वाचन आयोग का विशेष दल 20 अगस्त तक निर्वाचक नामावली से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट ने आज नर्मदा संरक्षण के लिए अविरल मां नर्मदा मिशन गठन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कल मैहर में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे और बीना रिफाइनरी से सेना के लिए -42 डिग्री तक न जमने वाले विशेष डीजल की पहली खेप रवाना हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:21 हो रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज का।

नमस्कार के साथ राम राम मारा किसान साथी हूँ। तो सबसे पहला तो एक बात बता दो, तुम्हारे कैसा हो तुम सब? अरे मारा मतलब चकाचक तो हो नहीं? देखो मैं तो यो चाहूँ कि तुम सब चकाचक रहो। तो सबसे पहला तुम सबको स्वागत है, वंदन है और उसके साथ घणो घणो अभिनंदन भी है। यो तुम्हारो भाई सुमित कुमार और आकाशवाणी की प्रसारण वाला विशेष अंक मालवी गीतारी गूंज के एक बार फिर तुम सबका बीच में लेके आई गयो है। आज अपना मंगलवार है ने हनुमान जी को धन भी है। नौका बाद तिथि की बात करा तो आज अपना सावन महीना की शुक्ल पक्ष की छठ वही गई है। अब आओ आज का धन पे बात करा तो आज भी घन सारा धन है। पहला धार्मिक कोण पे ध्यान दा तो सबसे पहला है आज कल्कि जयंती, मतलब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि का प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाए यो धन है। उसका बाद आज का ऐतिहासिक धन पे बात करा तो आज का धन है यानी 18 अगस्त 1945 के ताइपे में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निधन हुई गयो। तो उका बात आज है विश्व कभी हार नहीं मानवा वालों दिवस, मतलब इको यो है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आई जाए अपने अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहे। जनित कही है नहीं कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो बोले हैं नहीं कि लहरोती डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अनिज उदाहरण के लिए अपना किसान भी, किसान का जीवन में भले ही कितनी मुश्किल आई जाए कितनी समस्या आई जाए एक सच्चो किसान कभी भी हार नहीं माने है। वो हमेशा मेहनत करतो जाए है। गंज बार हो के फसल खराब हुई जाए तो वो अंदर ही टूटे सही पर फिर मनिक मेहनत करेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा और अगली बार और ज़्यादा तरक्की करेगा और फसल और अच्छी तरीके से करेगा। तो अपन आज को जो कार्यक्रम मालवी गीतारी गुंज किसान का जीवन पे लेने आया हाँ, पर उका पहला जैसो कि तुम्हारे मालूम है कि अपन अपना कार्यक्रम के शुरू करवा का साथेज मुख्य रूप से मालवी समाचार सुना हाँ। तो आओ आज भी अपन कार्यक्रम में मालवी समाचार सुना। आकाशवाणी उज्जैन प्रस्तुत है कार्यक्रम मालवी समाचार।

नमस्कार, समाचार के साथ मैं तमारो भाई सुमित कुमार। सबसे पहले अपन आज बुलेटिन का मुख्य समाचार सुन ला। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उसका बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का उपलक्ष्य में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान को शुभारंभ भी करो है। मौसम विभाग ने अगला 3 दिन तेज बारिश का दौर जारी रहने को अनुमान जतायो है। अब समाचार विस्तार थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन के साथ हुई। उसके बाद बैठक का लिया गया निर्णय की जानकारी देता हुआ मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट में अविरल माँ नर्मदा मिशन को मंजूरी दी गई है। इनका साथ ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान समेत कई क्षेत्र का विकास के लिए करीब 1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करी गई है। श्री सिंह ने बताया कि एक साल में बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवे और अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं की शुरुआत करी जाएगी। अन्य परियोजना के प्रभावी संचालन का लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने 35 नया पद की सृजन की स्वीकृति कर निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का उपलक्ष्य में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा को शुभारंभ करियो। अभियान के तहत 20 अगस्त से 10 सितंबर तक जिला में कलश यात्रा, 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क कार्यक्रम और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक समरसता यात्रा आयोजित करी जाएगा। गुणा में आज बलराम कृषि महोत्सव को आयोजन करी जा रहा है। कृषि उपज मंडी नानाखेड़ी में आयोजित होने वाला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली किसान के संबोधित करेगा, उन्नतशील किसान से संवाद भी करेगा, किसान के कृषि की नई तकनीक और सरकारी योजना की जानकारी भी दी जाएगा। उसके बाद भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थी के लिए आयोजित अभ्युदय 2026 कार्यक्रम को शुभारंभ करियो। कार्यक्रम में अभिनेता पीयूष मिश्रा भी मौजूद रहा। उसके बाद अन्य अवसर पर हिंदी पत्रकारिता का 200 वर्ष पे आधारित पुस्तक 2 सदी साक्षी सहित विभिन्न प्रकाशन का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी ती संवाद करे उनके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करियो है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बच्चा के आधार बायोमेट्रिक अपडेट का अभियान में जुड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। देश भर में अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा उनका बायोमेट्रिक अपडेट कर दिया गया है। यह विशेष अभियान पिछला वर्ष सितंबर में शुरू हुए तो अनिका अंतर्गत 1,56,000 से ज़्यादा विद्यालय में बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा दी गई है। 5 साल तक कम उम्र का छोटा ही उनके आधार में खाली नाम, पता और फोटो जैसी जानकारी दर्ज करी जाए है। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। पूर्वी हिस्सा में बना स्ट्रांग सिस्टम का असर थी रीवा और बालाघाट समेत 14 जिला में भारी बारिश को अलर्ट जारी करियो है। अगला 3 दिन में प्रदेश में तेज बारिश को दौर जारी रहेगा। रीवा और बालाघाट में अति भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 12 जिला में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाका में 24 घंटा के दौरान 4 से 8 इंच बारिश होने की संभावना है। उसके बाद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यामा की थेत हतार थुजार को सीधे गेमों में हराई के भारत की उन्नति हुडा महिला सिंगल्स का दूसरा दौर में

पहुंची गई है। पहला गेम में कड़ी टक्कर देखने के मिली है, जिन्हें भारतीय खिलाड़ी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी के 22-20 से हराया है। दूसरा गेम में उन्हें शानदार प्रदर्शन करता हुआ 21-16 की आसान जीत दर्ज कर ली है। अब उनको मुकाबला राउंड आप 32 में कनाडा की 13वीं वीरता प्राप्त मिशेल ली से होगा। खरगोन में विद्युत उपयोग उपभोक्ताओं की समस्या और शिकायत का त्वरित समाधान के लिए आगामी 20 अगस्त के खंडवा रोड कार्यालय में शिकायत निवारण शिविर को आयोजन किया जाएगा। उसके बाद आगर मालवा जिला में जिला जल और स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने अधिकारियों के समय सीमा पर हैंडपंप की रखरखाव कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। तो अनिका साथ मैं विदा लूँ आज का मुख्य मालवी समाचार थी।

तो अभी आपने सुनिया आज का मुख्य मालवी समाचार FM 102.5 MHz पे उका साथे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पे आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी। अब देखो बात तो घनसारी करनी है ना, करांगे भी सही, पर भूलो मत के आज अपनो कार्यक्रम है मालवी गीतारी गूंज। और मालवी गीतारी गूंज को योज मतलब हो कि अपना रेडियो के एक ती एक मालवी गीत उनसे गुंजानो है। और उका बात मालवी बोली और जो अपनी मालवी भाषा है वह अपनी संस्कृति की एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि तुम्हारे मालूम है अपनी संस्कृति मालवा से जुड़ी अंतर है और मालवी बोली भी मालवा से जुड़ी अंतर है। तो अन्य संदर्भ में आओ अपन अपना कार्यक्रम में आगे बढ़वा के साथ ले चला हमारे आज का पहला एक प्यारा सा गणेश वंदना पे।

तो आओ अब आइए अपना मुख्य विषय पे। तो आज मैं हम सबका सामने एक जरूरी बात लेके आयो हूँ, उसको नाम है गांव को जीवन ने अपना किसान को जीवन। गांव खाली सबका सामने मतलब रेवा की जगह नहीं है, बल्कि गांव तो अपनी संस्कृति, अपनी मेहनत और अपनी पहचान को आधार है। गांव को पेट खेती ती भरे है और खेती से गांव को हर काम धंधो चले है। सबसे पहला बात करा किसान की, तो किसान अपना गांव को अन्नदाता है। वो ज्वार, बाजरो, गेहूँ, चना, सोयाबीन, मसूर ने सब्जी वन उगाए है। जब खेत में हरियाली लहरावे है तो गांव में खुशियाली आए है, ने उका बात खेती में अपनी फसल तीज अपना काम, अपना गांव की अर्थव्यवस्था चले है, ने उका साथ अपना देश की भी अर्थव्यवस्था चले है। क्योंकि जैसो तुम्हारे मालूम है कि अपनी खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोले है, ने रीढ़ की हड्डी का अपना शरीर में कितना बड़ो योगदान रहे, ऐसे अपने खेती को भी अपना देश की अर्थव्यवस्था में गंज बड़ो योगदान रहे। अपना गांव की अर्थव्यवस्था ऐसे तो चले है, अर्थव्यवस्था तो छोड़ो अपना हरी का जीवन भी ऐसे चले है। देखो फसल बिके तो किसान के पैसा मिले है, यो पैसों फिर किराना की दुकान, कपड़ा, दवाई, बच्चा की पढ़ाई और गृह गृहस्थी में खर्च हुए है। कई अनिच प्रकार के गाँव में रुपये घूमते रहे और अर्थव्यवस्था चलती रहे है। उका बात अपना गांव में पशुपालन को भी घणो बड़ो काम रहे है। किसान उनको दूसरों सबसे बड़ो आय को साधन पशुपालन ज रहे है। जिन किसान कन ज़्यादा जमीन नहीं है न दूसरों कोई मुख्य धंधो नहीं है, ऐसा में पशुपालन एकमात्र वो कहनी अंग्रेजी में ऑप्शन रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी इन सब गाँव की आमदनी को मुख्य साधन रहे है। गाय भैंस को दूध बेची के रोजाना नगद आमदनी मिले है। कई गाँव में दूध सहकारी मंडली बनी अंतर है, जिका माध्यम से किसान के उनका दूध को सही दाम मिले है। दूध को धंधो किसान के रोज को खर्च चलावे में मदद करे है। अब बात करा कुटीर उद्योग की और परंपरागत काम की, तो गांव में बड़ई, लोहार, कुमार, दर्जी, नाई सबको अपनो अपनो काम है। कुमार मटका बनावे, लोहार हल बैलगाड़ी सुधारे, बड़ई दरवाजा खिड़की बनावे, न दर्जी अपना कपड़ा ही वे है। ये सब एक दूसरा में निर्भर हुए है। गाँव की अर्थव्यवस्था खाली रुपया ही नहीं चले, अभी तो अपने आपसी सहयोग पे भी निर्भर करे हैं। अगर अपना गांव में एक दूसरा को सहयोग नहीं मिले तो अपना गांव को कहीं ना कहीं विकास है रुकी जाए है, नहीं इन्हीं अपने अर्थव्यवस्था भी चले है। उका साथ अपने देश की सरकार भी अपना किसान का लिए ग्रामीण लोग का हित में गंज प्रकार की योजना निकाले है, जिमें अपना गाँव जन का लिए कहीं ना कहीं वो कहनी अंग्रेजी में सपोर्ट मिली जाए। योजना कैसी, जैसे कि मनरेगा, जिको अभी नाम बदली दियो है, अबे ओके जी राम जी योजना कर दियो है, इन्हीं में मजदूरी मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसान के सीधी मदद मिले, बैंक और स्व सहायता समूह महिलाओं के छोटा छोटा ऋण दई के कारोबार शुरू करवा मदद करे है। कई गांव में महिला पापड़, बाड़ी, मसाला, अचार या फिर उका साथ कई प्रकार का कपड़ा सिलवा को भी काम करे है। इनका इन समूहवंती आर्थिक सहायता भी मिले है, ने अपना गाँव की महिला ये बनावे तो शहर में बेचे भी है, अनिति कहीं ना कहीं अपना घर बैठा बैठा आमदनी भी बढ़े है, ने रोज को घर खर्चो भी चली जाए है। अब तुम्हारे तो मालूम है जो है कि अपना घर बारा में कितरो खर्चो बढ़ी जाए है, रोज को खावाती लई ने एक एक चीज को सबको खर्चो कितरो निकले है। अगर रोज की आवक नहीं रहे तो इतरो सब सामान को खर्चो कहाँ से निकाला। उका बाद गाँव में हाट बाजार को

घणो महत्व रहे। हफ्ता में एक दिन हाट लगे है, जड़ी में किसान अपना खेत में उगी फसल ने साग ने सब्जी ने सब उपज बेचे है। उसके बाद लोग जरूरी सामान खरीदे, राशन सब्जी मसाला ने और भी जरूरत का सामान गंज मड़े है हाट में। यो हाट खाली खरीदी या बेच या फिर बेचवा की जगह को नहीं रहे, अपितु मेल मिलाप को भी एक साधन रहे। तुमने देखे होगा कि अपना गांव में जब हाट लगे तो वहाँ गंज आसपास का गांव का आईने मड़े अपना थी, तो इन थे अपना गांव को सामाजिक और आर्थिक जीवन जुड़े अंतर है। अपना बुजुर्ग बतावे हैं कि पहला का जमाने में बटई और विनियम प्रणाली चलती थी, अनाज दई के सेवा ली जाती थी। आज रुपयो आई गयो है पर आपसी भरोसो आज भी जिंदा है। शादी ब्याह जैसा कार्यक्रम में गांव वाला मिली जुली के काम करे है, यो आपसी सहयोग की असली ताकत है। पर साथियों आज गांव की अर्थव्यवस्था का आगे कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। खेती में लागत बढ़ी गई, मौसम अनिश्चित वही गयो, युवा शहर में नौकरी वास्ते जा रहा है। अब थमसा सोचो अगर युवा गाँव के छोड़ देगा तो गाँव को विकास कहाँ से होगा, गाँव को विकास तो रुक ही जाएगा। इकले जरूरी है कि अपन ऐसी खेती अपनाए जिसमें मेहनत करवा के साथ ज़्यादा आमदनी चालू हो जाए, और अपन उनमें आधुनिक तकनीक अपना ही सकता हाँ। उसके बाद ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज, जैविक खेती, इन सब के अपन अपना ही सकता हाँ, जड़ी में अपनी आमदनी बढ़ी जाए। उसके बाद आजकल को किसान मोबाइल और इंटरनेट की मंडी भाव देख ही सके है और सही दाम पर फसल भी बेची सके है, तो हमारा गाँव का भविष्य जदेज उज्ज्वल हो पाएगा। जब अपन खेती के परंपरागत नहीं समझी ने उके व्यवसाय समझांगा, फसल विविधीकरण करांगा, सब्जी फल फूल डेयरी मधुमक्खी पालन अपनावांगी, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनावांगी, युवा पढ़ी लिखी के गांव में नहीं नया उद्योग शुरू कर देगा जैसे दुग्ध सब प्रसंस्करण, आटा चक्की, कोल्ड स्टोरेज, ऑनलाइन बिक्री। आखिर में हमारी याद राय है कि अपन अपना गाँव की अर्थव्यवस्था के सुधारने है तो अपने एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। अपना गाँव की अर्थव्यवस्था कोई किताब की बात को नहीं है, अभी तो रोजमर्रा की जिंदगी है। खेत को हल, गाय भैंस को दूध, हाट को बाजार और आपसी मेलजोल, इन सब मिली के गांव के जिंदा रखे है। अगर हम सब मिली जुली के मेहनत करांगा, नई सोच अपनावांगा और अपनी मिट्टी से प्रेम रखांगा तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी जाएगा और गांव खुशहाल बनी जाएगा। तो आओ अपन संकल्प लेवा के अपना गाँव के आत्मनिर्भर बनाएंगा, समृद्ध बनाएंगा और खुशहाल बनाऊंगा। गाँव मजबूत होएगा तो देश मजबूत होएगा। अब आओ अपना कार्यक्रम के आगे बढ़वा का साथ थमान ले चला अपना कार्यक्रम का दूसरा गीत पे।

तो अपन बात कर जाता अपना ग्रामीण जीवन का बारे में, उसके बाद खेती बाड़ी के बारे में। देखो अपनों भारत देश खेती प्रधान देश है। अपना गांव की धरती आज भी किसान का पसीना से सिंचित है। किसान के अन्नदाता क्यों कहवे हैं? क्योंकि वो धरती माती अनाज दाल तिलहन सब्जी उगाई के सबको पेट भरे हैं। पर आज को किसान घनी मुश्किल थी घिराए अंतर है। जो किसान एक आदमी को घर अनाज थी भरे हैं, वो आज खुद चिंता का कर्जा के मार झेली रो है। आज को किसान को काम काली हल जोतनो नहीं है, बुआई ती लईने कटाई तक घणो सोची समझी के विचार करीने काम करनो पड़े हैं। पहला जमीन के तैयार करनो, पाछो बीज चुननो, खाद पानी की व्यवस्था करनी, निराई गुड़ाई करनी, कीड़ा रोग ती फसल के बचानो ने पाछो मंडी में बेचवा को सब काम किसान के खुदे देखनो पड़े हैं। अब तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर ड्रिप सिंचाई जैसी नई तकनीक भी आई गई है, पर छोटा किसान के या सब अपनावे में दिक्कत आवे है। आजकल मौसम भी भरोसा लायक नहीं रियो है। कभी बरसात टाइम ते पहला आई जाए तो कभी बिल्कुल भी नहीं आवे है। कभी ओलावृष्टि फसल के पीटी दे तो कभी पाड़ो पड़ी जाए है। जलवायु परिवर्तन को असर साफ दिखाई दे रहा है। किसान पूरा साल मेहनत करे पर आखिरी में अगर पानी ज़्यादा या कम पड़ी जाए तो कोई सारी मेहनत बर्बाद हो जाए है। गाँव वन में सिंचाई के लिए पूरी व्यवस्था भी नहीं है। कई खेत आज भी बरसात का भरोसा है, कुआ सिंचाई सूखता जा रहा है, जमीन को पानी नीचे चली जा रहा है। आर्थिक परेशानी भी कम नहीं है। बीज खाद कीटनाशक को भाव दिन पे दिन बढ़तो जा रहा है। ट्रैक्टर को किराए ते लेने अलग अलग खर्चों कई प्रकार का खर्चा किसान का जीवन में रहे। किसान ने एक बार अगर साहूकार या बैंक ती कर्जा ले लियो न, अगर फसल ठीक नहीं निकली या मंडी भाव कम मिलियो तो कर्जो चुकाना भी भारी पड़ी जाए हैं। या एक अंदर की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हारे, इकाले सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे हैं पर हर किसान के वो भाव मिल ही नहीं पावे हैं। जरूरी नहीं है यू सिर्फ मंडी में भी बिचौलियावान बीच में घुसी जावे ने किसान के कम दाम में माल बेचना पड़े है। आज किसान पे सामाजिक दबाव भी घणो है। घर परिवार की जिम्मेदारी, छोर छोरी की पढ़ाई, बीमारी को खर्चो, समाज की रीति रिवाज, ये सब बात पढ़ने के किसान के अंदर ती तोड़ी देवे है। खेती में घाटों भी हुई जाए, मन भी टूटी जाए, किसान कठोर जरूर होए पर उको भी तो मन ने दिल कोमल हो यार। सरकार कई योजना चलाई दी है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके अंदर किसान के सीधे आर्थिक मदद मिले है। खेती में स्रोत ने नई तकनीक अलावा के लिए भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद जैसी संस्था काम करी रही है, पर गांव उन तक पूरी जानकारी ने सही लाभ पहुंचाना आज भी चुनौती है। चलो ये सब तो ठीक है, पर अब जरूरी है कि पानी बचाव पे जोर दिया जाए। अभी बरसात का समय चली रो है, तालाब बावड़ी ने वर्षा जल संचय जैसे इनके बढ़ाना चाहे, अपने जो बरसात को पानी है के भेड़ो करना चाहे, ओके खाली बाई ने निकली या वो नहीं होना है, अपने भेड़ो को इन्हें रखना है बाद में जरूरत पड़वा कलेगे, क्योंकि बाद में जब अपने पानी की जरूरत पड़े तो उम्मीद अपन सिंचाई कर सकता। हाँ उसके बाद तो किसान के प्राकृतिक खेती जैविक खेती ने फसल विविधता अपनाने का मौको मिले, मंडी व्यवस्था साफ सुथरी बने ताकि किसान के उचित भाव मिले, सहकारी समितियां मजबूत बने तो बिचौलिया की भूमिका कम हुई जगह। मारो किसान आज भी सूरज निकलवाती पहला खेत में पहुंची जावे ने सूरज ढलवा का बात है पाछो घरे आवे हैं, गर्मी सर्दी बरसात कहीं भी होए काम थी वो पाछे नहीं हटे हैं, किसान देश की रीढ़ रहे है। अगर किसान खुशहाल है तो देश भी समृद्ध बनी जाए है। तो मारो कहवा को मतलब यो है कि किसान की परेशानी समझनो ने उके दूर करनो खाली सरकार को काम नहीं है बल्कि समाज को भी फर्ज है। जब तक खेत हरा भरा रहेगा तब तक गांव ने देश दो ही जीवित रहेगा, किसान के सम्मान ने सहयोग मिल जाएगा तो खेती फेरती लाभकारी अने गर्व को काम बनी जाए है। उका बात यो कि अपना कार्यक्रम में मालवी गीतारी गूंज, तो आओ अपना कार्यक्रम को अगलो गीत सुनाओ का बाद बात करांगे अपन।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: देखो अपनो कार्यक्रम है अभी चली रहो है मालवी गीतारी गूंज और मैं अपन बात करी रहा हाँ अपना ग्रामीण जीवन का बारा में, पर उका पहला अपन आओ थोड़ा सा अलग जाए के अपने सोयाबीन की फसल का हाल जानना है, क्योंकि अभी कहीं सोयाबीन की फसल जैसी ले रही थी है। हर किसान को यह सपनों है कि अगली बार बम्पर आवक होए और अच्छा उत्पादन मिले अपने और मंडी में भाव भी अच्छा मिले। तो इका संबंधित मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत सलाह देता हूँ जो अपना कृषि विभाग ने बतायो है कि अभी जो किसान सोयाबीन में किणी किणी बात को विशेष ध्यान रखी सकते है। तो सबसे पहला तो किसान भाई उनके सोयाबीन की फसल में 3 दिन अधिक जल जमाव नुकसानदायक हो सकता है, इको बात ध्यान रख जो, मतलब अगर जल भरियो रहेगा सोयाबीन की फसल में तो यह नुकसान अपनी सोयाबीन की फसल के दे देगा। अतिरिक्त या अधिक वर्षा होवा की स्थिति में खेती जल निकास की उचित व्यवस्था अपने करनी है, जितनी कहीं खेत में पानी बन रहा है को नहीं खाली पानी पड़े और खेत में से निकली जाए। उसके बाद घनी फसल होने पर संबंधित सोयाबीन फसल में गर्डल बीटल जिके रिंग कटर को प्रकोप होने की अधिक संभावना हुई है, अतः सोयाबीन का तना में 2 रिंग दिखाई देने पर इस या फिर मुरझाई लटकी हुई ग्रसित पंतियों के प्रारंभिक अवस्था में तोड़ी के खेती बाहर कर देना है अपने। उसके बाद अपना खेत के नियमित निगरानी करनी है, क्योंकि निगरानी थी सब कहीं हो ही पाएगा, जितना काम अपने कीटनाशक की दवा और दूसरी दवा वगैरह कर देगा इससे ज़्यादा काम अपनी निगरानी करेगा, अपने बस ध्यान रखना अपनी फसल उनको। तो उसके बाद अपने निगरानी यह करनी है कि पौधा के हिले के सुनिश्चित करना है कि अपना खेत में कीट इल्ली को प्रकोप तो नहीं है, और यदि 1 वर्ग मीटर में 3-4 इल्ली दिखे तो उपरोक्त अनुसार कीटनाशक कीट नियंत्रण करना है अपने। उसके बाद सोयाबीन के फसल में पक्षियाग में बैठना है तो टी आकार का बर्ड प्रचेस लगावा, जनिति पक्षी बैठी के सोयाबीन के हानिकारक कीट और इल्ली के खई के कीट की संख्या कम कर सकता है। यो घरेलू उपाय है कीट बिना कीटनाशक छांटी के कीट को प्रयोग प्रकोप कम करने को। तो अभी अपन काम बात कर रहा था अपना ग्रामीण जीवन के बारे में। देखो ग्रामीण जीवन पूरा अपनों मालवा पे अड़ियो अंतर रहे, मालवा से जुड़ियो अंतर रहे, और मालवा की संस्कृति का तुम्हारे बारे में तुम्हारे मालवा की संस्कृति के बारे में तुम्हारे मालवा में जो होगा कि मालवा की संस्कृति इतनी विशाल है कि अपन अगर एक दिन रात भी पूरा उन्हीं पर बात करा तो अपनी मालवा की संस्कृति ख़त्म नहीं होएगा। अपना मालवा का लोकगीत, मालवा का लोक नृत्य, उनका मालवा का त्यौहार देखी लो, जिमें दिवाली ले लो, होली ले लो, राखी ले लो, अभी राखी आवा वाली है। तो इन त्यौहारों के खाली त्यौहार का रूप में नहीं मनाता अंतर, बिल्कुल पेलातीच उत्साह आया का बहन बेटी आवा लगी जाएगा घरे, और जो राखी को मैं बताया तुम्हारे कि राखी को तो काम ही जल हुई जाएगा, बिल्कुल हर घर में रौनक छा लग जाएगा, पामना पोया आवा लगी जाएगा। ऐसोच काम दिवाली को भी है, दिवाली पे 4-5 दिन पहला रंगोली मननी चालू हो जाएगा, दिया जलना लगी जाएगा और घर की साज सज्जा पे काम कर जाएगा। उसके बाद तो अगर अपना मालवा का ब्याह उनके शादी उनके देखा तो उनकी तो भातेज मत करो, क्योंकि यानी इतना अच्छा अच्छा तथ्य, मतलब मालवी गीत, उसके बाद शादी का हर एक तक, मतलब जो एक बाजार में शादी हुए अरे ग्रामीण में शादी हुए उन्हीं में गंज फरक रहे हैं। बाजार में खाली कि आज ब्याह चालू हुए हो और काले बारात लेके आइया और ब्याह ख़त्म, माज अगर बात अपन अपना ग्राम की कराऊँ तो गाँव की तो भाते निराली है, मतलब 7-8 दिन तक तो वानाज रखे अपना ही, माता पूजन अलग होएगा नहीं, फिर वाना झेलेगा नहीं, रोज आते नाचनों कूदनों।

गीत गाड़ा ने इनमें दन निकले ना, वी जो दन जो निकले 7-8 दिन ब्याह का, उसकी तो बात ही अलग है। क्योंकि अपन भी देखा, अपन ने गांव की शादी उन देखी होगा, गांव में शादी खाली शादी नहीं रही, मतलब अगर गांव में की कहीं शादी है तो वो आधा गांव मतलब त्योहार के रूप में।

0: FM 102.5 MHz और News on AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव।
2: जापान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर है। ये प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में 18 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट सहित कई अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इस इन्वेस्टमेंट मीट में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कि हम भारत और जापान के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों और जापानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
3: भारत और जापान के संबंध बहुत प्राचीन हैं और बहुत गहरे हैं। जापान में भी बहुत सारे लोग बुद्धिज्म की प्रथा को मानते हैं और उसके लिए वो भारत तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि किस तरह जापान ने हमेशा भारत की आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के लिए किस तरह का योगदान दिया है। अगर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो हम सबको याद है कि 80 के दशक में किस तरह निवेश भारत में आया था और उसने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिल्कुल बदल दिया। दिल्ली की मेट्रो, उसमें जापान का योगदान रहा, आर्थिक भी, उन्होंने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दिया और टेक्नोलॉजी भी दी। अब आप देख रहे हैं कि भारत में मेट्रो की व्यवस्था है और बहुत तेजी से उसमें प्रगति हो रही है। इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना रेलवेज का, उसमें भी जापान की ODA उनका है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, उससे बहुत मदद मिली और इस समय पूरा देश आशा कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो बहुत ही तेज रफ्तार से चलेगी, उसका काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसमें भी जापान की आर्थिक सहायता भी है और टेक्नोलॉजी भी जापान की है। तो इस तरह एक ही सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें जापान का बहुत योगदान भारत के लिए रहा है और इसका एक जो भाव है वो मित्रता का है। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बहुत ऊपर आता है और सब हमें याद है कि किस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भारत की तरफ आ रहे थे म्यांमार से, तो उसमें जापान का बहुत सहयोग था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुखद यादें हैं और उसमें भारत और जापान की आगे की यात्रा के लिए एक ये बहुत ही अच्छी नींव है और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी इमारत भारत और जापान की मित्रता की, सहयोग की और एक दूसरे की मदद करने की इस समय बनाई जा रही है।
2: अब जापान का जो ये प्रतिनिधि मंडल है, ये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो आ रहा है भारत की यात्रा पर, ये उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग को अटेंड करेगा जिसमें इस बैठक में राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, उसका मकसद है कि जापानी कंपनियों की व्यवसायिक दिलचस्पी और को ठोस निवेश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या संयुक्त परियोजनाओं को और बड़े पैमाने में रोजगार पैदा करने में बदलना। आप कैसे देखते हैं इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को?
3: इस समय भारत जापान का जो सहयोग है, जो मित्रता है, उसका फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट पर है। भारत और जापान के बीच में इस शताब्दी में शुरू से ही वार्षिक समिट होती है प्रधानमंत्रियों के बीच में, 2026 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें जापान की प्रधानमंत्री ताने तकाईशी भारत आई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर। और उसमें और उससे पहले जो मीटिंग हुई थी पिछले वर्ष, ये निश्चय हुआ था कि 10 साल में जापानीज कंपनी 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करेंगी, जो करीब 60,000 करोड़ करीब संपत्ति है। तो इसमें कुछ काम तो हो चुका है और जब जुलाई की मीटिंग जो हुई थी उसमें 150 जापानीज कंपनियां आई थी और 120 MOU उस समय साइन हुए थे जिनकी टोटल निवेश होना था 12.5 बिलियन डॉलर, 12.5 बिलियन डॉलर। अब इस समय जो लखनऊ में

0: एक चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस होगी और बातचीत होगी, उसमें भी 150-200 जापानीज कंपनी आ रही हैं। और मेरा मानना है कि बहुत सारे एमओयूज वहां पे हस्ताक्षर उन पर होंगे। और यूपी की प्रगति बहुत तेजी से इस समय हो रही है। भारत तो विकसित भारत की तरफ बढ़ ही रहा है, और उत्तर प्रदेश में जैसे जेवर एयरपोर्ट नया आ गया है, इंडिया पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो तरह तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयत्न कर रही है कि विदेशी निवेशक जो भारत आए उनके लिए कोई अड़चन ना आए, और बहुत जल्दी जो भी वो निर्णय लें, जो भी वो निवेश के लिए उनका जो प्रोजेक्ट है, जो सोच है, उसको एक रियलिटी का रूप दिया जाए।
1: एम्बेसडर टाइल, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 25-26 में जापान के साथ भारत का कुल व्यापार 27.48 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें 6.04 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 21.44 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल था। 2024-25 में जापान के कुल व्यापार में 1.4% हिस्सेदारी के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा, जबकि भारत के कुल व्यापार में 2.1% हिस्सेदारी के साथ जापान 17वें स्थान पर रहा। भारत में जापान का FDI मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, फाइनेंशियल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आया है। भारत में लगभग 1500 जापानी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आप इस व्यापारिक साझेदारी को और मजबूती करने की संभावनाओं को कैसे देखते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्र जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है?
0: इस समय व्यापार भी जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है उससे कम है। निवेश की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अभी जुलाई में जब प्रधानमंत्री साने ताकायशी भारत में थी तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक जॉइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर दोनों नेताओं ने अपनाया, एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी रेजिलियंस पर। तो नया निवेश जो होगा वो लिक्विड नेचुरल गैस स्टॉक पाइलिंग की एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, एक जापानीज निवेश ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा में लगने का विचार है, क्योंकि भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसके लिए ग्रीन अमोनिया की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, उसमें काफी निवेश भारत में हो सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत अधिक बात चल रही है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पर उनको रक्षा के जो इक्विपमेंट उसके निर्यात पर पहले कुछ उसमें रोक थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको उन्होंने हटा दिया है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स के एक नया आयाम खुला है जिसमें कि भारत और जापान बहुत सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय दोनों देश चीन पर बहुत अधिक निर्भर हैं और दोनों देश ये चाहते हैं कि चीन पर ये जो निर्भरता है क्रिटिकल मिनरल्स की, इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स की, वो कम हो। उसके लिए जापान भारत में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की, भाई क्रिटिकल मिनरल्स भारत में कहाँ कहाँ है, और उसमें उनको रिफाइन करने में उसमें भी मदद करेगा। और मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, इस पर भी काफी ये देखा गया है कि जो एक्टिव PIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो एक्चुअल दवाई होती है, उस पर भी दोनों देश कुछ चाइना पे ज्यादा निर्भर है। तो उसको भी देखा है कि दोनों देशों ने निर्णय किया है कि उसमें एक दूसरे की मदद करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। मेडिकल डिवाइसेस आजकल देखिए, अस्पताल में जाए तो नया नया इक्विपमेंट रोज नजर आता है, रोबोटिक सर्जरी है, तरह तरह के एक्सरे वगैरह हैं, NMR है, एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अब दोनों देश देख रहे हैं कि नए रास्ते ढूंढे जाएं, कि दुनिया जिस तरह प्रगति कर रही है, एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जुलाई में कहा था कि जो मीटिंग उन्होंने की है प्रधानमंत्री साने तकाईशी के साथ, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा है। एजेंडा ये है कि कैसे भारत भी ट्रांसफॉर्म, मतलब एक लेवल से दूसरी लेवल, ऊंची लेवल तक पहुंचे, और उसकी जो जड़ में होगा वो एक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया इस समय एक कगार पर खड़ी हुई है, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी वजह से सब आ रहा है, और भारत और जापान मिलकर एक और एक 11 होते हैं, और भारत की स्किल्स, स्किलिंग, हमारे IT के इंजीनियर्स, उनका तो लोहा दुनिया मानती है, और जापान की टेक्नोलॉजी मिलकर बहुत ही अच्छा काम अपने लिए, अपने दोनों देशों के लिए और विश्व के लिए कर सकते हैं।
1: जापान में 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, क्या आपको वहां भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बढ़ाने की संभावना नजर आती है और वो

0: किन क्षेत्रों में हो सकती है?
1: इस समय भारत की कंपनियां अधिकतर सर्विस सेक्टर में हैं या सॉफ्टवेयर या फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में अधिक है। और मैं समझता हूं कि भारत की कंपनीज वहीं ज्यादा काम कर सकती हैं जहां कुछ ह्यूमन लेबर की आवश्यकता हो, स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता हो, और या वहां की इंडस्ट्री को कुछ सर्विसेज, मेंटेनेंस की सर्विसेज और इस तरह की आवश्यकता हो। पर हमारे जो निवेशक हैं और हमारे कंपनीज हैं, उनको नए नए रास्ते वहां ढूंढने चाहिए जिससे कि भारत भी वहां पे जापान में निवेश कर सके और भारत की कंपनियां भी जापान के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर जापान की इकोनॉमिक प्रगति में अपना योगदान कर सकें।
0: अभी जापान में लगभग 59,000 भारतीय रह रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ सकती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं और दोनों देश जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या हेल्थ केयर का हो, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं?
1: जापान की जनसंख्या इस समय धीरे धीरे कम हो रही है। वहाँ बर्थ रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम है, बहुत एजिंग जनसंख्या है, क्योंकि जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ऊंची है। और इस सब के लिए जापान की सोसाइटी को जो यंग स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, डे केयर में, एजेड केयर में भी उनको बहुत लोगों की आवश्यकता है। और एक तरफ से तो वो, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, कुछ रोबोटाइजेशन की तरफ भी बहुत ज्यादा वहां पे जा रहे हैं, पर सर्विस सेक्टर में भी जो अवसर हैं वो भारतीय स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और प्रोफेशनल्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए बहुत नए अवसर वहां पर खुल सकते हैं। भारत से टूरिज्म जापान अब बहुत बढ़ना शुरू हुआ है और जापान में क्योतो पुराना राजधानी है उनकी, वहाँ बहुत लोग जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे बुद्धिस्ट मंदिर हैं। एक नागासाकी के रास्ते में है, टोक्यो में बहुत स्थान है। जापान से भारत लोग बुद्धिस्ट सर्किट पर काफी आते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए भी वो आते हैं, क्योंकि वहाँ टाइगर, लायन, इस तरह हाथी वगैरह जापान में नहीं है, तो टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से भारत में टूरिज्म को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, नए नए होटल्स बन रहे हैं और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया भारत में होती चली जा रही है, एयरपोर्ट, अब आप जाएं पूरे भारत में अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हर जगह, छोटी छोटी जगहों पे भी खुल रहे हैं, क्योंकि जापानीज जब आते हैं तो कुछ वो बहुत चाहते हैं कि सब चीज बिल्कुल ठीक चले, स्मूथली चले, और भारत उस दिशा में बहुत प्रगति कर चुका है और प्रगति कर रहा है, तो टूरिज्म भी दोनों देशों का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ।
0: सर, इस संदर्भ में आप दोनों देशों के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज की संभावनाओं को कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जापान में यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई होती है वो जापानीज भाषा में होती है, तो वहाँ भारत के विद्यार्थी जाते हैं, स्कॉलरशिप्स पर जाते हैं, पर बहुत अभी संख्या उनकी कम है। पर उसका एक रास्ता ये ढूंढा गया है कि भारत के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जापानीज भाषा पढ़ाने के अवसर बहुत बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। ये कहा गया था कि करीब 30,000 भारतीयों को जापानीज भाषा में अच्छी लेवल की जिस बोल सके उनको ट्रेन किया जाएगा। वो सब कार्यक्रम चल रहा है। जब ये एक रास्ता खोल देगा भारत के विद्यार्थियों को जापानीज यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी और रिसर्च के लिए भी।
0: एम्बेसडर टाइल, आपने बहुत विस्तार से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8:15 हो रहे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

यारियां फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा की आवाज़ में। इस गीत के बोल लिखते हुए संगीत से सजाया था मिथुन ने।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे बरसात फिल्म का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत आप लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में सुन रहे थे। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत दिया था मदन मोहन ने।

सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे साबरी ब्रदर्स की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

0: थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था एम एम किरावनी ने। एफएम 102.5 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5

0: लाख 78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.newsonair.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अगा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़े विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए

उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्त

तरक्की के अपने अज़्म की तौसीख की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के इल्ज़ाम और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्ज़ाम की छानबीन के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जाँच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि आबनाए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमरीका के साथ तयशुदा उसकी तमाम शराइत पूरी नहीं हो जाती। मर्दों के क्रिकेट में चौथे दिन श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरफ्त मजबूत हो गई है। मेज़बान टीम 372 रन के जीत के निशाने के लिए खेलते हुए 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी है और ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल भारत की ख्वातीन की डबल्स की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की के लिए अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का आज एक बार फिर इआदा किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात से मुतालिक वुज़रा की 12वीं मीटिंग के इख्तिताम के मौके पर एक मुश्तरका वजारती बयानिए में आज कहा गया है कि ब्रिक्स ममालिक पायदार तरक्की के लिए 2030 के एजेंडे की मुकम्मल और मौसर अमल आवरी में पेशरफ्त, आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस माहिदे के तहत अपने अज़्म को एक बार फिर दोहराते हैं। मेंबर मुल्कों ने इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब से फाइनेंस की दस्तियाबी समेत बैनुल अक्वामी तआवुन में इजाफा लाजमी है ताकि तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजों से मौसर तौर पर निमटने के अहल हो सकें और साथ ही पायदार तरक्की और गुरबत को जड़ से ख़त्म करने के मामले में पेशरफ्त कर सकें। ब्रिक्स ममालिक ये मानते हैं कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन और उनके बाहर भी, जिसमें जुनूब जुनूब तआवुन के ज़रिए भी तआवुन और शराकत दारी शामिल है, से अवाम मरकूज अंदाज नज़र के साथ पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। इस बरस भारत ब्रिक्स की सदारत कर रहा है जिसका मौजू है मज़ाहिमत इख्तिराआत तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। ब्रिक्स वुज़रा ने पायदार तरक्की का अहल होने की हैसियत से सर्कुलर मईशत में पेशरफ्त के ताल्लुक से भारत की क़ियादत के लिए अपनी सताइश का इजहार किया। इससे कल मीटिंग से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि माहौलियाती कार्रवाई अवाम मरकूज पायदार और तरक्की पजीर ममालिक के हकाइक के तईं जिम्मेदार होनी ज़रूरी है। वजीर मौसूफ ने उभरते हुए आलमी माहौलियाती चैलेंजेस को उजागर किया और उनसे निमटने के लिए ब्रिक्स के मजबूत तआवुन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत की ब्रिक्स सदारत के लिए 4 तरजीहात: पायदार तर्ज ज़िंदगी का फरोग, शजरकारी, जंगलात में आग का बंदोबस्त और कुदरती आफत की सूरत में मज़ाहिमत, सर्कुलर मईशत और ततबुख का खसूसी तौर पर जिक्र किया। भारत ने आज कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी और वसत आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अमरीकी इंतखाबात में वोटरों की शिनाख्त की कमी के मुतालिक उनके बयान के हवाले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तर्जुमान ने कहा कि भारत के इंतखाबी निज़ाम में मुस्तकिल अपनी मजबूती और भरोसेमंदी का मुजाहरा किया है। इन खबरों से मुतालिक कि भारत को बांग्लादेश से तवानाई की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, जनाब जायसवाल ने बताया कि भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ तवानाई का एक जारी सिलसिला रखता है। उन्होंने कहा कि जहां तक इजाफी दरख्वास्त का ताल्लुक है, भारत अपनी जरूरियात, रिफाइनिंग की सलाहियत और अपनी जानिब से दस्तियाबी को पेश नज़र रखते हुए उसका जायजा ले रहा है।
शहजाद भट्टी दहशतगर्दी के नेटवर्क के बारे में भारतीय दावों के तई पाकिस्तान के रद्द अमल पर तर्जुमान

0: ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के मामले को इंतहाई संजीदगी से लेता है। जनाब जायसवाल ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने की भारत की लड़ाई जारी रहेगी और दहशतगर्दी की इस लानत को शिकस्त देने के ताल्लुक से जिस किस्म की भी कार्रवाई दरकार होगी भारत वो कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में एहतिजाज के मुतालिक वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वहाँ कई जानें तलफ हुई हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनों को खोया है और ज़ख्म खाए हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अशिया और रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि सूरत हाल इस तरह की है कि मकामी आबादी को बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से हमदर्दी और यगानगत की ज़रूरत है और वो इसकी मुस्तहिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एक साबिक डीजीपी और सीबीआई के एक साबिक डायरेक्टर पर मुश्तमिल इंतहाई बा इख्तियार कमेटी तश्कील देगी जो दिल्ली में हालिया एहतिजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और पुलिस अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जामात का जायजा लेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की क्यादत वाली तीन जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि कमेटी की तश्कील के मुतालिक एक हुक्मनामा कमेटी में शामिल करने के लिए दीगर मेंबरों के मुतालिक मुख्तलिफ फरीकैन से तजावुज मौसूल होने के बाद कल जारी किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आला इख्तियाराती कमेटी को हकीकत का पता लगाने के हदफ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उसे तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। अदालत ने कहा कि कमेटी जिंसी एतबार से हमला किए जाने के मुतालिक और ख्वातीन अहलकारों को ऑनलाइन हरासा किए जाने, नीज सोशल मीडिया के जरिए दीगर जद पजीर अफराद को निशाना बनाए जाने के सिलसिले में लगाए गए इल्जामात की जाँच भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि वो यह हिदायत भी देगी कि दिल्ली में 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के दौरान तशद्दुद की वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आला इख्तियाराती कमेटी के सुपुर्द की जाए ताकि वो इसका जायजा ले सके। बेंच कॉकरोच जनता पार्टी की जांच करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के इल्जामात और पुलिस अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्जामात से मुतालिक कई अर्जदाश्तों की समाअत कर रही थी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से सरकारी सेक्टर के बैंक 1 महीने तक जारी रहने वाली मुहिम का आगाज करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग फॉर यूथ। नई दिल्ली में आज शाम पब्लिक सेक्टर बैंक कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस मुहिम के दौरान बुनियादी तौर पर नौजवानों को जोड़ने और उनके मालियाती सफ़र का पता लगाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस मुहिम का टारगेट ग्रुप नौजवान पेशेवर अफराद होंगे जिनकी उम्र 16 बरस से ज़्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुहिम नौजवान सारिफिन के साथ एक पायदार वाबस्तगी के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी जिससे मुस्तकबिल में उनके कारोबारी सफर के लिए सहूलत हासिल होगी। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि मसनूई जिहानत, क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल आलात तर्ज हुक्मरानी की तेजी से काया पलट कर रहे हैं। उन्होंने लेटरल एंट्री ज्वाइंट सेक्रेटरीज के लिए 15 रोजा रेफ्रेशर कोर्स में शामिल शुरका से खिताब करते हुए ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने सिविल सर्वेंट्स के लिए मुसलसल आमोजिश की जरूरत और मुताबिकत पैदा करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार हुक्मरानी के लिए मौसर तर्ज गुफ्तगू एक लाजमी जरूरत बन गई है। वजीर मौसूफ ने इस बात का भी जिक्र किया कि आदाब गुफ्तगू के बदलते हुए माहौल, बिलखसूस सोशल मीडिया के बढ़ते हुए रोल के दौरान अफसरान के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि वो मुख्तलिफ तरफैन के साथ मौसर तौर पर बातचीत की सलाहियत को बढ़ाएं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आला मेयार की ज़रई पैदावार की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि आलमी बाजार के मेयारात से मुताबिकत रखी जा सके। आज नई दिल्ली में ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल ICAR की 57वीं सालाना जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने फार्म से आलमी बाजार तक भारतीय ज़रई अशिया को वसत देने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नज़रिए को उजागर किया। उन्होंने भारतीय ज़राअत में हुसूल याबियों पर खुशी का भी इजहार किया जिसके तहत गेहूं और चावल की सालाना पैदावार को दुगना करके शानदार तरक्की दर्ज की गई है।
1: अपनी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर हमें गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूँ, किसानों को प्रणाम करता हूँ। वैज्ञानिकों की मेधा बुद्धि, किसानों का पसीना और सरकार की नीतियों ने निश्चित तौर पर एक

0: चमत्कार किया है। हम लोगों ने प्रयोग किया कि हम कैसे आमों को 35 दिन तक बचा के 35 दिन करने में सफलता प्राप्त हुई और उसके कारण हम सिंगापुर दुबई समुद्री मार्गों से भी अपना उत्पाद भेज सके।
1: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करें ताकि उनकी अगले कुछ दिनों में जामे तिब्बी जांच हो सके। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के बानी इमरान खान के इलाज और अपने घर वालों से मिलने से मुतालिक कई अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए 3 मेंबरों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह हुक्म मंजूर किया। अदालत ने कहा है कि इमरान खान की सेहत और जिंदगी और तिब्बी सहूलियात के लिए उनके हक की आईनी गारंटी के तहत यह हुक्म दिया गया है। ईरान ने आज कहा है कि जब तक अमेरिका के साथ दस्तखत किए गए 14 नुकाती मुफाहमत नामे के तहत ईरान की सभी शराइत पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक आबनाए हुरमुज बहरी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तेहरान ने इस इंतहाई अहम आबी गुजरगाह को दोबारा खोले जाने की गैर मुल्की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने और फौजी कार्रवाई को रोकने से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मजीद महाज आरआई के खतरनाक नतीज की वार्निंग देते हुए जोर देकर कहा कि इस्लामी जमहूरिया दुश्मन की कार्रवाइयों और जारहियत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी ये रायजनी तरफैन के दरमियान मुफाहमत नामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने की खातिर अमन बातचीत के लिए 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद सामने आई है। जनाब कालिबाफ ने सिफारती अमल का दिफा करते हुए कहा कि मुफाहमत नामे के तहत फौजी कार्रवाई रोकने के लिए 60 दिन की मुद्दत में ईरान के कौमी दिफा और घरेलू मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम मौका फराहम किया है। मुनफरिद शनाख्त के मुतालिक भारत की अथॉरिटी UIDAI ने बायोमेट्रिक के लाजमी अपडेट्स के लिए अपनी मिशन की तर्ज पर चलाई गई मुल्कगीर मुहिम में एक बड़ा संग मील हासिल किया है और मुल्क भर में स्कूल जाने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट्स मुकम्मल कर लिए हैं। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई इस खसूसी मुहिम के तहत अब तक 1,56,000 स्कूलों का अहाता किया गया है जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे आधार का अपना बायोमेट्रिक मुकम्मल कर पाए हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ मेज़बान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। आज शाम जब खेल खत्म हुआ तो सोनल धिनुसा और धनंजय डिसल्वा क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए मानव सुथर ने 2 विकेट हासिल किए। इससे कबल दिन में भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की जीत के लिए 372 रन का निशाना रखा। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। वो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के चौथे खिलाड़ी भी बने। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन नई दिल्ली में जारी BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के डबल्स में भारत की ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की जोड़ी ने अमेरिका की लॉरेन और एलिसन की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-15, 21-12 से हराया। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की के अपने अज़्म की तौसीख की है। भारत ने जोर देकर कहा है कि माहौलियात से मुतालिक कार्रवाई में तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करना लाजमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के इंतखाबी निज़ाम की सताइश के ताल्लुक से भारत ने कहा है कि उसकी इंतखाबी मशीनरी की भरोसेमंदी आलमी सतह पर पूरी तरह अपनी शनाख्त रखती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के इल्ज़ाम और सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ तशद्दुद के इल्ज़ाम की छानबीन के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान को तिब्बी जाँच के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

सामईन महफिल आदाब, मैं हूँ आफरीन बानो और उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आप सुन रहे हैं महफिल समा, एक ऐसी रूहानी महफिल जहाँ अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में उतर जाते हैं, जहाँ सुर सिर्फ मौसीकी नहीं रहते बल्कि इश्क की जबान बन जाते हैं, जहाँ कव्वाली महज एक फन नहीं बल्कि दिल से दिल तक पहुँचने वाली एक रूहानी कैफियत बन जाती है। आज की हमारी महफिल मंसूब है उस बुजुर्गे दीन की याद में जिनकी खानकाह ने सदियों तक मोहब्बत, सब्र, सादगी और इंसानियत का पैगाम दिया। जिनके दर से कोई मायूस लौटे ये उनकी तालीम का हिस्सा नहीं था, और जिनकी जिंदगी ने यह समझाया कि खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता उसकी मखलूक से मोहब्बत और उसकी खिदमत भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह की। सूफियाना रिवायत में इश्क सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का रास्ता है। ऐसा इश्क जो इंसान को अपने गुरूर से निकाल कर खुदा की तरफ ले जाए, जो दिल को नर्म करे, जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने की तालीम दे, और जब इश्क की यही कैफियत सुरों में ढलती है तो समा वजूद में आता है, और जब वही कैफियत अल्फाज में उतरती है तो कव्वाली बन जाती है। तो आइए इसी इश्क की रोशनी से अपनी आज की महफिल को रोशन करते हैं और आगाज करते हैं हमारे महफिल समा के खूबसूरत प्रोग्राम का। सुनते हैं ये कव्वाली। हे कहाँ कोई भी मुस्तफ़ा की तरह, वो है यकता जहाँ में खुदा की तरह। आवाज़ है असलम साबरी और साथियों की, कलाम है असद अजमेरी का। समाअत कीजिए।

माधानी रे लागे रे जारे नीजा दानी से नानी पगा मानी दा गामा

आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों की आवाज में ये खूबसूरत कव्वाली। और महफिल समा में हम आगे बढ़ रहे हैं इश्क से इबादत तक और इबादत से इंसानियत तक के उस सफर पर जिसकी एक बेहद रोशन मिसाल है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को समझना दरअसल सूफियत की उस रूह को समझना है जिसमें जाहिरी दिखावे से ज्यादा दिल की सफाई को अहमियत दी जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश बदायूं में 1238 ईस्वी में हुई। बचपन से ही इल्म और रूहानियत की तरफ आपका रुझान रहा। आगे चलकर आप दिल्ली पहुंचे और चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर से आपकी रूहानी निस्बत कायम हुई। यही निस्बत आगे चलकर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बनी। चिश्तिया सिलसिले की तालीम में मोहब्बत, फक्र, सब्र और खिदमत को बड़ी अहमियत हासिल रही है। यही वजह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही, वो जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का दरवाजा भी बनी। कहा जाता है कि उनकी खानकाह में आने वाले के बारे में ये नहीं देखा जाता कि वो अमीर है या गरीब, उसका ताल्लुक किस तबके से है, उसकी जबान क्या है, उसकी हैसियत क्या है। अहम ये था कि वो इंसान है और उसे सहारे की जरूरत है। ये तो सूफियत का एक बेहद खूबसूरत पहलू है, दिल को इतना बड़ा कर लेना कि उसमें अपने साथ दूसरों के लिए भी जगह बन जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की तालीम में मोहब्बत का ये पहलू बहुत गहरा था। उनके यहाँ खुदा की मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत एक दूसरे से अलग नहीं थी, क्योंकि अगर दिल में इश्क है तो उसका असर रवैये में भी दिखाई देगा। किसी भूखे के लिए निवाला बनेगा, किसी परेशान के लिए सहारा बनेगा, किसी मायूस के लिए उम्मीद बनेगा। और शायद इसी वजह से सूफियों की महफिलों में समा की अपनी एक अहम जगह बनी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की महफिलों से जुड़ी एक और खूबसूरत शख्सियत का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी निस्बत हिंदुस्तानी सूफियाना रवायत की सबसे यादगार मिसालों में शुमार की जाती है। खुसरो के लिए उनके पीर सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि मोहब्बत और रूहानी रहनुमाई का मरकज थे। इसीलिए जब हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का जिक्र करते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई समा की महफिल, सूफियाना कलाम और अमीर खुसरो की याद भी अपने आप चली आती है। और इसी रूहानी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी अगली कव्वाली की तरफ बढ़ते हैं। ये कलाम हमें उस अकीदत और मोहब्बत की याद दिलाता है जिसमें एक बंदा अपने बुजुर्ग की निस्बत को अपने लिए रूहानी सहारा समझता है। तो आइए मोहब्बत और अकीदत के इसी रंग में रंगी अगली पेशकश सुनते हैं। मोहम्मद सईद की आवाज में कलाम है सैयद अब्दुल हक शाह का। बोल हैं ख्वाजा ख्वाजा जो कहता रहे उसका हर काम बनता रहे।

मोहम्मद सईद की आवाज में आपने सुनी ये खूबसूरत कव्वाली। महफिल समा की इस कड़ी में हम जिस पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक दौर या किसी एक खानकाह तक महदूद नहीं है। वक्त बदलता रहा, बादशाह बदले, शहर बदले, मगर मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत का पैगाम अपनी जगह कायम रहा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी में खिदमत खल्क यानी खुदा की मखलूक की खिदमत एक अहम पहलू था। सूफियों ने इंसान के दिल को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि अगर किसी इंसान का दिल टूट रहा है तो उसके पास बैठना भी इबादत की कैफियत पैदा कर सकता है। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाना महज एक समाजी काम नहीं बल्कि इंसानियत की जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम आज भी सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग के तौर पर नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत के पैगंबराना अखलाक की पैरवी करने वाले बुजुर्ग के तौर पर याद किया जाता है। उनकी तालीम का असल खूबसूरत पहलू यही था कि इंसान अपने दिल को नफरत से नहीं मोहब्बत से आबाद करे। सूफियत हमें यह भी सिखाती है कि इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं इश्क देने का नाम भी है। अपने रब की मोहब्बत दिल में हो तो उसकी मखलूक के लिए रहमत पैदा होनी चाहिए। किसी के लिए दुआ करना, किसी के दुख में शामिल होना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी की गलती को माफ कर देना और किसी को उसकी कमजोरी के बावजूद इज्जत देना, ये सब उस रूहानी सफर के पड़ाव हैं जिसे सूफी इश्क कहते हैं। और जब यही इश्क इश्क रूहानी अपने महबूब हकीकी की याद से जुड़ता है तो जिक्र, दुआ और कलाम की कैफियत और भी गहरी हो जाती है। आज की हमारी तीसरी और आखिरी कव्वाली भी इसी याद और मोहब्बत के एहसास को अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसी याद जिसमें नाम जबान पर आता है तो दिल दुआ की तरफ बढ़ जाता है। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें जिक्र महज अल्फाज नहीं रहता बल्कि दिल की कैफियत बन जाता है। तो आइए अपनी इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगली पेशकश। करता हूँ याद तुमको मोहम्मद खुदा के साथ, आता है नाम लब पे तुम्हारा दुआ के साथ। कलाम है हनीफ भोपाली का और आवाज़ है मुनव्वर मासूम और साथियों की। समाअत कीजिए।

आपने सुना मुनव्वर मासूम और साथियों की आवाज में ये खूबसूरत कलाम, और इसी के साथ आज की हमारी महफिल समा अपने आखिरी मरहले तक पहुंच रही है। इश्क हो तो ऐसा जो दिलों को जोड़ दे, जिक्र हो तो ऐसा जो किरदार को बेहतर कर दे, इबादत हो तो ऐसी जिसमें मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा हो, और जिंदगी हो तो ऐसी जिससे किसी दूसरे की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की विरासत हमें यही पैगाम देती है कि दिल में मोहब्बत रखिए, नफरत के लिए जगह कम कीजिए, और जहाँ तक हो सके किसी के काम आइए, क्योंकि सूफियों की जबान में इश्क सिर्फ कहा नहीं जाता, जिया जाता है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल की खास पेशकश महफिले समा। आपकी तजावीज, आरा और खत हमारे लिए हमेशा कीमती हैं। अपने खत हमें इस पते पर भेज सकते हैं। उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल। पिन कोड है 462002। मैं हूँ आपकी मेजबान आफरीन बानो। आपसे इजाजत चाहती हूँ, फिर किसी और रूहानी मौजू, किसी और सूफियाना कलाम और किसी और सूरत महफिल समा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दिलों में मोहब्बत को जिंदा रखिए। इंसानियत का दामन

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म हावड़ा ब्रिज से।

ओपी नैयर का संगीत कमर जलालावादी के लिखे बोल। आशा भोसले की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हावड़ा ब्रिज से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म प्यासा से।

एस डी बर्मन का संगीत साहिर लुधियानवी के लिखे बोल, गीता दत्त की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यासा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है नूरजहां की आवाज़ में फिल्म अनमोल घड़ी से।

नौशाद का संगीत तनवीर नकवी के लिखे बोल, नूरजहां की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अनमोल घड़ी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे गीता दत्त की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम।

हेमंत कुमार का संगीत शकील बदायनी के लिखे बोल, गीता दत्त की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म साहेब बीवी और ग़ुलाम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दुलारी से।

नौशाद का संगीत शकील बदायूनी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दुलारी से। कार्यक्रम का अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में प्रस्तुत है फिल्म कागज़ के फूल से।

एस डी बर्मन का संगीत कैफी आजमी के लिखे बोल। गीता दत्त की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कागज़ के फूल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म महल से।

हेमचंद प्रकाश का संगीत, जे नक्षप के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म महल से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए प्रस्तुत है दिव्या शर्मा का ख्याल गायन, राग मधुवंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे दिव्या शर्मा का ख्याल गायन राग मधुवंती। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

0: इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के

0: से अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in national capital. Mr. Chauhan said, थ्रू शक्ति की सप्तधारा।